ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चित आवे चितावन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोलबाले

दान केश दान रहत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म।

संकट जोन घर बना आयो। ऐसे दीनदयाल सतगुरु शहीदां दे सिरताज, बाणी के बोहेथ शांति दे पुंज, पंजवें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी ने महान पर उपकार करदे आ। गुरुद्वारा श्री राम सर साहिब जी विखे अज दे शुभ दिहाड़े महान कृपा करदे आ। पोथी परमेश्वर का थान आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा स्वरूप लिखवा के ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी नु पहले ग्रंथी थाप के तिना दे शीश ते सुभायमान करके आप चौर साहिब कर दिया। दिठे सबे थाव नहीं तुद जेहिया, बद्धो पुरख बेरात ता तू सोहिया। सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे पहला प्रकाश कीता। आप जी दा पहला प्रकाश गुरपुरब बेअंत संगता सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा अते भावना नाल मना रहीया हन। जथा शक्त पेटावां अर्पण कर रहीया हन। सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नु अपने दरो करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना। शुभ भावनावां पूरियां करनिया, यात्रा सफला करनी सतगुरां दे प्रकाश गुरपुरब दी खुशी अंदर। बेअंत संगतां दिने 8:30 तो 12 बजे तक सुंदर जलौ सजा रहीआं हन। शाम नू दीपमाला कर रहीआं हन। हे निमाणिया दे मान, नेताणिया दे तान, नेउटिया दी ओट, धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ। जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों करहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास। समूह संगत अते टहलिया दी अरदास। आप जी दे हजूर करहा प्रसाद दी देग हाजर है। दर परवान होवे परवान होया प्रसाद, संगत विच वर पाउण दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चित आवे, सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवाना।

0: थोड़ी साहिब हुए दयाल कृपा कहता साई कार कराई सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाई सी हुक्म मने होवे परवार ता कसमे का फल पाए सी कसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी तांदर गै पैदा जैसी तांदर गै पैदा जैसी
1: कोई गावे राग नादी बेटी बापा कर नहीं पर हर कुछ राम राय।

0: चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला शामिल है। ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसका विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हांग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। वहीं बुरंडी के राष्ट्रपति एविरिस्ते नादियने शिमिए अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। यह निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मेडिंग वेव 373.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ थे। आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र ज्ञान अमृत

0: लोग जाने यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार, यह पावन कथन श्री भगत कबीर जी का है, जो कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच सुभायमान है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रचयिता पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी हुए ने। आप जी ने गुरु साहिबान भगतां ते महापुरुषों की बाणी बिना किसी भेदभाव के संग्रहित करके, संकलित करके, संपादित करके रूहानी का यह खजाना सिरज दिता। संजीवालता के प्रतीक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच एक अकाल पुरख की गल की है, तो एक अकाल पुरख के नाल एक मिक होने का वसीला भी दसिया है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच भाषाई पक्ष तो भी अनोखा संभाव है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सांझी है ते सबना दे लई है, इस करके साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संदेश उपदेश सबना लई सांझा है। सभ्य सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बहरा जियो। रूहानियत के इस थाल विच परोसे गए सत संतोख के विचार गुरु कृपा राही ग्रहण किया जा सकता है, जो कि मनुखा जीवन दे विच सहाई सिद्ध हो सकते ने। सत संतोख के विचार अपने जीवन च ग्रहण करने वाला प्राणी निश्चय ही पवसागर तो पार हो सकता है। एक अकाल पुरख की सर्वव्यापकता, जगत की अस्थिरता, सर्वसांझी वालता दी प्रतीक तुरकी बाणी दे इस भंडार नूं जदों साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने ईस्वी सन 1604 विच पोथी दा रूप प्रदान करके बेड तैयार कीती, तां अज दे दिन ईस्वी सन 1604 विच गुरद्वारा श्री रामसर साहिब श्री अमृतसर साहिब तों साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने शानदार नगर कीर्तन के रूप में श्री हरिमंदर साहिब श्री अमृतसर विखे लिया गया। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप में ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने बड़े सत्कार नाल अपने सीस ते चुकिया होया सी। पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी चौर कर रहे सन, नाल संगतां ते भाई गुरदास जी भी सन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया श्री हरिमंदर साहिब के पहले ग्रंथी होने का मान हासिल करने वाले ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी सन। आप जी ने बड़े अदब नाल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहले बार प्रकाश किया, कोई हुक्मनामा लिया जिस दियां तुना अज भी कुल कायनात विच गूंज रही हैं। सोही महला पंजवां, संतों के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी बाणी तपद्या हिरदिया नूं शांत करती है, कुराहे पई हुए लोगों नूं सच्चा मार्ग दर्शाती है, कुराहे पई हुई लुकाई नूं एक मंजिल वल प्रेरती है। वह मंजिल है उस अकाल पुरख नाल अभेदता प्राप्त करना। यह ताही संभव है जेकर इस इलाही बाणी नूं गुरु जान के पढ़िया जावे, विचारिया जावे और मन्या जावे। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरु बाणी कम है सेवक जन माने, प्रतक गुरु निस्तारे।
1: सच का ज्ञान अमृत आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। आप सुनते हैं भक्ति संगीत प्रोग्राम।

भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी बलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर

0: इस उपरांत प्रोग्राम होएगा महक पंजाब दी। 9:02 ते फिल्म म्यूजिक इस प्रोग्राम तहत तुसी हिंदी गीतों का आनंद माण सकोगे। 9:30 स्रोतियां दे खतां ते आधारित प्रोग्राम पेश किया जाएगा तुहाडी चिट्ठी मिली। ठीक 10:00 चर्चा होएगी क्रिकेट बनाम हाकी ते होर खेडां। इस विच भाग लैण के सुरेंद्र सिंह सोढी, रजिंदर सिंह ते पेशकश वीरेंद्र सिंह। यह प्रोग्राम आकाशवाणी के पटियाला ते बठिंडा केंद्र तो भी तुसी नालो नाल सुन सकते हो। 10:30 हिंदी गीतां दा तुहाडी फरमाइश ते आधारित लाइव फोन इन प्रोग्राम पेश करांगे हैलो फरमाइश। 11:05 ते पंजाबी गीतां दा वट्सएप मैसेज बेस्ड प्रोग्राम होएगा धमक जलंधर पैंदी। 12:05 ते वसदी वेड़े प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा। अज दे इस प्रोग्राम च वर्ल्ड फर्स्ट एड डे दे उत्ते गलबात की जाएगी ते इस तो बाद सिलसिला होएगा झांजरां दे बोर। 1:15 फौजी वीरां लई, 2:30 रंगली धरती प्रोग्राम च निर्मल सिंह धारीवाल अज दे साडे फनकार होणगे। बाद दुपहरे 4:02 ते प्रोग्राम सुनोगे खेड संसार। साढ़े 4:00 उस तुम श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलेंगे जिथों तुसी शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे। 5:30 साडा रोजाना प्रोग्राम होएगा गुरबाणी विचार। 6:30 देहाती प्रोग्राम च कम दियां गल्लां ते मंडियां दे भाव तों बाद पंजाबी नाटक कीड़ियां दा पौण इस दा पहला भाग प्रसारित किया जाएगा। 7:00 स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनाया जाएगा किसान बाणी। इस प्रोग्राम तहत किसान समाचार ते किसान संदेश प्रसारित किए जाएंगे। 7:40 ते साहित्य सुधा प्रोग्राम च संस्कृत साहित्य विच उत्तम समाज की कल्पना इस विषय ते डॉक्टर राजकुमार गलबात करनगे। 7:50 ते स्पॉन्सर प्रोग्राम होएगा लम्हे। 8:00 जिंदगी हसीन है। 8:15 सुर सरिता प्रोग्राम च भाई प्रभप्रीत सिंह शांत ते उन्होंने साथियों पासों तुसी शब्द सरवण करोगे। रात 9:15 स्पॉटलाइट साढ़े दिल्ली केंद्र तो 9:30 संस्कृति भारती ते 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इस अज रात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी मुताबक इस वेले सवेर के 6:55 हो रहे हैं। हुण सुनते हैं संस्कृत च समाचार।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। अष्टादशतमं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनम् अद्य नवदिल्ल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र आरप्स्यते। द्विदिवसीयमिदं भव्यं सम्मेलनम् एकादश प्रमुखोदयमानानां विकासशीलानां च अर्थव्यवस्थानां प्रतिनिधीन् परस्परं संयोजयिष्यति। उच्चस्तरीयस्य अस्य सम्मेलनस्य अवसरे ब्रिक्स सदस्य देशानां नेतारः वैश्विक शासनम् बहुपक्षवादः व्यापारः निवेशः प्रौद्योगिकी खाद्योर्जा सुरक्षा स्वास्थ्य सेवा महत्वपूर्णाः आपूर्ति श्रृंखलाः चेत्येतेषु प्रमुखेषु विषयेषु चर्चां करिष्यन्ति। इदं शिखर सम्मेलनम् भारतस्य अस्य वर्षस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायाः अन्तर्गतम् आयोज्यते। अस्य सम्मेलनस्य विषयो वर्तते सुदृढतायै नवाचाराय

0: सहकाराय सतत विकासाय च निर्माणम्। अस्मिन् महत्वपूर्णे शिखर सम्मेलने अनेके प्रमुखाः विश्वनेतारः सहभागं करिष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह रूसस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन, चीनस्य राष्ट्रपतिः शी चिनफिंग, दक्षिणाफ्रीकादेशस्य राष्ट्रपतिः सिरिल रामाफोसा, मिस्रस्य राष्ट्रपतिः अब्दुल फतह सीसी, इण्डोनेशियादेशस्य राष्ट्रपतिः प्राबोवो सुबियान्तो तथा ईरानस्य राष्ट्रपतिः मसूद पजश्कियन अपि सम्मेलने सम्मिलिताः भविष्यन्ति। शिखर सम्मेलनस्य प्रारम्भः ब्रिक्स सदस्य देशेभ्यः समावेशिनः वैश्विक शासनस्य बहुपक्षवादस्य च सुदृढीकरणम् इति विषयमाधृत्य आयोजितेन संवृत्सत्रेण भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य शिखर सम्मेलनस्य अन्तराले ब्रिक्स नेतृभिः सह अनेकाः द्विपक्षीय वार्ताः करिष्यति। अष्टादशतमे ब्रिक्स शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुम् अनेके वैदेशिक नेतारः वरिष्ठाधिकारिणश्च नवदिल्ल्यां प्राप्तवन्तः। इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिः प्राबोवो सुबियान्तो ह्यः रात्रौ राष्ट्रिय राजधानीं प्राप्तवान्। अबुधाबी देशस्य युवराजः शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, मलेशिया देशस्य प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम, मिस्रस्य राष्ट्रपतिः अब्दुल फत्तह असीसी तथा इथियोपिया देशस्य प्रधानमन्त्री आबी अहमद अली च ह्यः सायंकाले नवदिल्ल्यां प्राप्तवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् ब्रिक्स देशाः वैश्विक नवाचारस्य अथ समाधानानां च महत्वपूर्ण केन्द्र रूपेण उद्भवन्ति। ह्यः सायंकाले नवदिल्ल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र ब्रिक्स व्यापार मञ्चस्य नेतृणां सत्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् ब्रिक्स देशानाम् आर्थिक सामर्थ्यं विश्वस्य अन्य भागानाम् अपेक्षया प्रायः द्विगुणित गत्या वर्धितमस्ति। सुरक्षित सामुद्रिक मार्गाणां महत्वं प्रतिपादयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् वैश्विक व्यापारः तदैव अग्रे गन्तुं शक्नोति। यदा सामुद्रिक मार्गाः सुरक्षिताः भवन्ति, आपूर्ति मार्गाः मुक्ताः तिष्ठन्ति अथ नाविकाः च सुरक्षिताः भवन्ति।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रूसस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन च ह्यः रक्षा ऊर्जा अन्तरिक्ष कौशल गतिशीलता जनानां मध्ये परस्पर सम्पर्कः चेत्येतेषु सदृशेषु क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहकारस्य प्रगतिः समीक्षां कृतवन्तौ। नवदिल्ल्यां सम्पन्नायां द्विपक्षीय वार्तायाम् उभौ नेतारौ पश्चिमैशियायां कृष्ण सागर क्षेत्रे च प्रवर्तमानान् संघर्षान् समेत्य परस्पर हित सम्बद्धेषु प्रमुखेषु क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु स्वकीय विचारान् प्रकटितवन्तौ। प्रधानमन्त्री मोदी पुनः प्रतिपादितवान् यत् संघर्षाणां समाधानस्य मार्गः संवादेन एव प्रशस्तः भवति तथा भारतं शान्ति प्रयासेषु साहाय्याय तत्परमस्ति इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्रीय न्यूज हेडलाइंस पेश ने मुख्य खबर। आठवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज नवी दिल्ली विच शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली विच ब्रिक्स व्यापार फोरम दे सेशन नूं संबोधन किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश विश्वव्यापी नवीनता ते हलां दे महत्वपूर्ण केंद्र वजों उभर रहे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल मुलाकात दौरान वख-वख खेत्रां विच दुवल्ले सहयोग की प्रगति का जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब च 18 सितंबर तो नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू करे।

स्वागत आप सब चाहण वालियां दा ते चाह के मुस्कुराउण वालियां दा। अज सलाम करदे हां सूरज चढ़न तो पहलां पंछियां दी चहचहट ते उहनां दा जज्बा जिहड़ा नवीं उड़ान भरन लई तैयार हुंदे दिन चढ़दे सार ही अपने टिकाणियां तों उड के नवें मुकामां दे वल कूच करदे ने। मैं तुहाडा अपना गगनदीप सोंदी प्यार मुहब्बत ते सादगी सारे गुण अपने विच भर के पंछी भी सानूं दसदे आ वी फिकर ना करिया करो बहुता ज़्यादा होया कि जे चार दिन दुख दे आ गए इत्थे सदा मुसीबतां रहिणियां नहीं जे हस के काम ना बने तेरा इत्थे रोया भी पूरियां पैणियां नहीं। पंछी दसदे ने सानूं जिंदगी नूं जी के देखिया करो साढ़े इस दुनिया दे विच आउण दा मकसद भी पूरा हो सके। बहुत बार ना सोच सोच के असी फिकर करन लग जाने आ नहीं मिलिया आ नहीं मिलिया कित आ मिल जाता तो शायद होर भी वधिया हो जाता पता नहीं की सोचते रहने तो आप अपनी जिंदगी असी बड़ी उदास जिही बना के बैठ जाने। इस करके जिंदगी दे विच ना कदे जी नहीं व्याई दी मस्ती च रही गल दिल ते नहीं लाई दी सो इस करके जिंदगी दे विच मुश्किलों तो घबराओ ना अगे वधो मतलब मकसद तुहाडी उड़ीक दे विच बैठा हुंदा। बाकी अपने अपने फर्जियां फर्जों वाल गर्ज नहीं बंदे होना चाहिए बस हौली हौली करके अगे वधदा जाए जिंदगी बड़ी सार्थक जिही बड़ी सरल जिही महसूस होनी शुरू हो जाती है। सो दोस्तों स्वागत के नाल नाल ये भी है सलाह कि अपन दे भी हाथ ना अपणन इन्ना उच्चा कद ना रखो। पैसा सब तो जरूरी है बिल्कुल पर रिश्तियां नालों वध ना रखो। की हो सकता की नहीं हो सकता यह सोचने का काम थोड़ा नहीं है। सुपने पूरे हो जाते हैं इन्हों की कोई हद ना रखो। रात में सौंदे हैं सवेरे उठन के एक सुपने के नाल तो बाकी जो है वह अपने दे नाल अपने खलोंदे आ जदों उस वेले पता लग जाता कि असी अपना अत्त दे विच जी रहे हैं। सवेरे उठ के तरोताजगी दे नाल जदों असी उठते हैं थकावट

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, 8 ਵਜੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर

0: दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नदायशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटकेओ भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
4: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
4: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
1: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
5: ब्रिक्स वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनली ट्रेड।
6: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह

0: दुनिया के लिए वसुदेव कुटुम्बकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
1: वसुदेव कुटुम्बकम
2: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच बढ़ाने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरेम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन की मुक्की में यह मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज पुतिन से

0: बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी पुतिन फिजिशकियन। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा, आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार चौथे और कुल छठे खिताब पर नजरे। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 वर्ष की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 साल पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. 18th BRICS Summit to begin in New Delhi today. Discussions to focus on global governance, trade, security and supply chains as world leaders assemble for two-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping and other BRICS leaders today on the sidelines of summit. Prime Minister Modi pushes for secure sea lanes, open supply routes and removal of trade barriers at BRICS Business Forum to sustain global trade. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Houthi rebels in Yemen seize strategic islands, tightening grip on key Red Sea shipping route. Uttar Pradesh government steps up relief and rescue operations as flood affect 25 districts. And in hockey, Indian women's team to clash with South Korea in semi-final of Junior Asia Cup in China this morning. And now the news in detail. The 18th BRICS Summit is set to begin at Bharat Mandapam in New Delhi today. The two-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. During the high-level event, leaders of the BRICS member countries are expected to discuss key issues including global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and energy, security, healthcare, disaster resilience and critical supply chains. The summit is being held under India's 2026 BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Several key world leaders will participate in the high-profile summit. Prime Minister Narendra Modi will be joined by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, and Iranian President

0: मैं प्रदीप कुमार बसी असिस्टेंट कमांडर रिटायर्ड 2022 में आया था। जहाँ पेंशन सेल है वहाँ मैं सेफ्टी की ड्यूटी कर रहा हूँ। तो आज जो इधर सीमांत मुख्यालय फ्रंटियर डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर में पेंशन अदालत जो है चल रही है, जिसमें जिन लोगों को जो रिटायरीज हैं हिमाचल से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, जो हरियाणा से आए हुए हैं, उनकी कोई कमी पेशियाँ जो पूर्ति करने के लिए, जहाँ बहुत से आदमी हमारे आज की डेट में 70 से ऊपर आ चुके हैं, हम उनका पूरा वो करवा रहे हैं। जिनका कोई डेट ऑफ करेक्शन है या मिसेज का मतलब नाम गलत है, या फिर इनका कोई बैंक से कोई प्रॉब्लम है, या कोई अदरवाइज कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे हम बैठ के यहाँ पे इनकी सॉल्व कर रहे हैं। और ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की है, और बहुत आदमी यहाँ पे आए हुए भी हैं। और हमने उनका काफ़ी आदमी को कर भी दिया है, और उनको आगे और भी जो आदमी आए हुए उनको कर भी रहे हैं।
1: पेंशन की है, जैसे PPO है, बाकी मिस्टेक है, सपेरिंग की मिस्टेक है, किसी का जो है सपोर्ट की प्रॉब्लम है, रिकॉर्ड की जो है, तो खासतौर पर जो ओल्ड पेंशन है ये बहुत ज़रूरी था। और ये आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो है पेंशन अदालत का, और बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह से जो सिस्टमेटिकली जो है लोगों की तकलीफें जो सुन रहे हैं और उनको हल कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली तक अप्रोच तो किसी की होती नहीं, तो ये यहाँ हमारे घर में आए हुए हैं, और काफ़ी जो है तकरीबन 400-500 पेंशनर हैं जिनकी प्रॉब्लम है, वो आप अपना जो है सॉल्व कर रहा है।
2: मैं राजेंद्र पाल शर्मा, रिटायर इंस्पेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया एक्स पैरामिलिट्री पर्सनल एसोसिएशन BSF कैंपस जालंधर में कार्यरत हूँ। ये जो नेशन पेंशन अदालत फ्रंटियर क्वार्टर जालंधर में जो लगी है, इसको ऑर्गेनाइज सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस फ्रंटियर क्वार्टर और ऑल इंडिया एक्स पैरामिलिट्री एसोसिएशन के द्वारा कराया जा रहा है। इसमें जो भी हमारे पेंशनर प्लस फैमिली पेंशनर है, उनकी जो भी ग्रीवियंस है, जो भी उनकी प्रॉब्लम दिक्कत आती है पेंशन के बारे में, निपटारा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके नाल जो है यहाँ काम चल रहा है, और जो उनकी ग्रीवियंस है उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुना जा रहा है, और उसको आगे उनका निपटारा करने जो है उनको अच्छे तरीके से जो है गाइड किया जा रहा है। ये जो एसोसिएशन है, ये फ्रंटियर क्वार्टर के साथ मिलके अपना जो है काम करती है, उनकी ग्रीवियंस सुनती है, और पेंशन अदालत के अंदर भी साथ होकर जो पेंशनर जो विडोज वगैरह आती है उनके साथ जो है उनकी समस्या का जो है समाधान करवा रहे हैं।
3: आई एम वीरेंद्र अवस्थी, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट BSF रिटायर्ड। ये जो आज यहाँ पेंशन अदालत हो रही है, इसमें हमारे जितने एक्स सर्विसमैन वाले हैं, अगर उनको पेंशन की कोई प्रॉब्लम है, मिसेस का नाम नहीं है या उनकी प्रॉपर पेंशन नहीं आ रही है, तो वो अपने पॉइंट्स यहाँ पे रखने के हकदार हैं और रखते हैं, और उनका साथ के साथ ही ये जो सोल्यूशन हो सकता है सोल्यूशन मिलता है, उसके लिए ये एकत्रित हुए हैं।
4: मेरा नाम KM मुरलीधरन है, मैं सेवानिवृत्त BSF का अधिकारी हूँ। आज पेंशन का अदालत इसलिए किया है जो पेंशनर्स को जनरली जो प्रॉब्लम्स आती है उसको रिजॉल्व करने के लिए, जैसे कि कईयों का NO के नेक्स्ट ऑफ किन का नाम में चेंज आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ में चेंज आ जाता है, आधार कार्ड नंबर सही तरीके से एंट्री नहीं होता है, इस कारण से कई बार क्या है पेंशनर का निधन हो जाता है, उसके बाद उनको जो डिपेंडेंट है उनको पेंशन सही टाइम पर नहीं मिल पाता है। कईयों के पास PPO पेंशन पेमेंट ऑर्डर का कॉपी नहीं होती है, वो कॉपी प्रोवाइड करना होता है बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर से मिलके। वो सभी लोग आज ऑनलाइन में हैं, सभी से मिलके जितना इनका समस्या है सही कर सकता है उतना सही करें। मैं प्रॉब्लम के लिए नहीं आया हूँ, मैं इधर पेंशनर्स को मदद करने के लिए आया हूँ। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो हमारे पास आ जाए, उनको सही दिशा निर्देश दिए, सही तरीके से उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
5: जी, मेरा नाम इकबाल कौर है, मैं हुशियारपुर जिले से आई हूँ, मैं अपने जेठ की पेंशन वास्ते आई हूँ। हाँ, असी पहली बार इस अदालत में आए हैं, शायद साडा सोल्यूशन हो जाए। सन 13 साल हो गए साड़ी पेंशन वास्ते घूमदू। हाँ जी, शायद हूँ ऐतकी बारी सानू उन्होंने फोन किया।

0: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
1: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
0: ओ केड़ी तब्दीली है बई?
1: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना,

0: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
1: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
0: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
1: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु, ते ओ हुन हो गया शनिवार नु।
0: यानी कि झांझरां दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे?
1: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
0: यानी कि बुधवार दी झांझरां दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छन क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे।

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अज नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे शुरू हो रहा है। दो दिन सम्मेलन दौरान विश्व शासन, व्यापार ते निवेश ते भोजन ते ऊर्जा सुरक्षा वर्गे मुद्दों ते चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग समेत कई ब्रिक्स नेतावां नाल दुवल्ली गलबात करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व व्यापार के निर्विघन प्रवाह नूं बनाई रखने लई सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्विघन सप्लाई लड़ी ते समुद्री नाविकां दी सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण दा दित्ता सद्दा। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU दे दूजे पड़ा तहत 18,77,000 मकानां नूं मंजूरी दित्ती है। उत्तर प्रदेश के 25 जिले हड़ां दी मार हेठ ने, राहत ते बचाव कार्य तेज कर दिते गए ने। पंजाब सरकार वल्लों पट्टी दर्ज जातां दे विद्यार्थियों नूं वड्डी राहत वजों अकादमिक सैशन 2025-26 लई डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल नूं 17 सितंबर तक दोबारा खोल दिता गया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना तहत करीब 2 लाख होर कार्ड जल्दी उपलब्ध होने की उम्मीद, 31 लाख कार्ड पहला ही जिले च उपलब्ध। गैंगस्टरां ते वार मुहिम तहत पंजाब पुलिस ने सूबे भर च गैंगस्टरां दे साथियां नाल जुड़ियां थावां ते 601 छापे मारे। पुलिस टीमां ने 4 हथियारां समेत 261 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार कीता। इस नाल हुण तक कुल गिरफ्तारियां दी गिणती 69,703 हो गई है। महिला जूनियर एशिया कप हाकी टूर्नामेंट के पहले सैमीफाइनल च अज भारत का दक्षिणी कोरिया नाल मुकाबला होगा। ये सन न्यूज हेडलाइंस यानी मुख खबरां आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। फिल्म म्यूजिक इस प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत। अज दा अनवान जीवन यानी जिंदगी ते आधारित है। आओ सब तो पहला सुनदे हां जिंदगी खूबसूरत है उदित नारायण ते साथियां दियां आवाज़ां च।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाए कथित चित्र
1: डाउनलोड वेब स्पॉटिफाई ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

0: ਹਾਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਫਰ 181 ਤੇ ਬੀ 173 ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ
1: ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਰ
0: ਜੀ। ਨਮਸਤੇ।
1: ग्राम मेला काचान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साहब की बात कर रहा हूँ।
0: जी रूप सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। आप सुनाइए, आप पंजाब के जालंधर केंद्र में कैसे हैं सभी लोग?
0: अस्त व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं और मजे से जी रहे हैं, बस इसी तरह से। अच्छा, गीत कौन सा आपको सुना दें?
1: भीगी पलकें फिल्म का नाम है और गाने के बोल हैं जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा।
0: चलिए, ये साथ हमारा बना रहे, बहुत धन्यवाद आपका
1: जी।
0: नमस्कार जी, जी नमस्कार। सफर 182 4173 01 1 2 3 4 2 1 7 3 ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ।

0: स्वागत करिए। हेलो
1: जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी,
1: मैं रामलाल नवी फतेहगढ़ साहब तो बाबू जी।
0: हाँ जी रामलाल जी, की हाल चाल?
1: पहला भाई पहला हाँ जी थोड़ा धन्यवाद करते बाबू जी थोड़े ना अभी बहुमान करते हैं जी उसी वर्तमान सुनाते नहीं होंगे सामू जी।
0: हाँ जी
1: रंगा पिछो रंग पंजाबी खंगा पिछो खंग पंजाबी मेरे अभी भी आवे जी
0: रंग पंजाबी ढंग पंजाबी आ जाओ वेखो वंग पंजाबी है ना चलो बहुत वधिया जी। ते गीत कहिहड़ा तुहानूं सुना दें दसो
1: गीत खुशी शायद आपकी
0: है। चलो खुशी वैसे हुई गल करके
1: बहुत
0: आवे
1: जी बहुत
0: आवे। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रामलाल जी, बहुत धन्यवाद। अपनी पसंद जो कोई भी गीत सुनना चाहते हो तो आ जाओ। हेलो फरमाइश।
2: हेलो

0: 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 21 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन की शुरूआत ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्था के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रेजनकोव ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेसियस भी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनका दौरा साझा प्रगति और समृद्धि के लिए स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक सहयोग के महत्व को दर्शाता है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहुल ने उनका स्वागत किया। भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, फिनटेक, महत्वपूर्ण खनिजों तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसर विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
2: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस बीच सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबकिना का सामना करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ऊंचा खटक। अगला मैसेज पहुंचा है फाजिलका गुरुचरण सिंह पट्टी, काका सिंह पट्टी, दारा सिंह पट्टी। अगले दोस्त शामिल करते हैं जी, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्लापुर, उत्तर प्रदेश तो आए ने जी। अगले दोस्त पहुंचे ने पिंड ते डाकखाना निमनाबाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जींद हरियाणा तो, जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। पदमपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति, भूमिका अरोड़ा, अर्शदीप ते सुरजीत सिंह अमरकोट तो आगे ने जी। चक चौंक बतियां वाला जिला श्री फतेहगढ़ साहब तो बलविंदर बिल्ला माधोपुरी, राज कौर, ज्योति गोल्डी, बब्बू टिवाणा, यूएसए तो रामलाल खरोड़ा ते इन्हां दा सारा माधोपुरी परिवार। लखनऊ उत्तर प्रदेश तो मास्टर खिलू परवेज, बेगम इमराना, नाज नवाजिश, शेख दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा ते नामदेव, सेफ वाटर सेफ लाइफ इन्होंने मैसेज दिता है जी। सतीश मिगलानी, लखविंदर संधु, विवान मिगलानी ते मलोट तो ए दोस्त आए ने जी। फतेहाबाद हरियाणा पुरानी तहसील चौंक तो इंदरपालपुरी, बिट्टू स्टैंप मेकर, चंचलपुरी, आंचलपुरी, गगनपुरी, पोता प्रिंसपुरी ते इन्हां दा पूरा परिवार, जीवन सिंह बूक ते बूक परिवार भी इस प्रोग्राम में शामिल हो गए ने। थी आओ फिर तुहाडी फरमाइश पूरी करदे हां जी सरदूल सिकंदर की आवाज़ दे विच।

भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता ते रुद्र वर्मा। गांव फ्रांसी हिसार तो राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी का मैसेज भी शामिल हो गया है जी। और अगले दोस्त आए ने साढ़े तक, इन्होंने सिर्फ मैसेज, हाँ जी मित्रन डॉक्टर चल्ला आवाज़ गाना लिखिया, यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, कोमल धीमान, शुभम धीमान, प्रियंका आंचल कुंज, परव परवीन धीमान, चिराग रजत धीमान ते राजेश धीमान होरी। अगले दोस्त साढ़े तक पहुँचने सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, बिपाशा शर्मा ते सोनिया कालका तो। ते कृपा करके अपने नाम ना लाइन वाइज लिखा करो कि बिल्कुल सारे एकदम मिक्स हो जाते हैं, तो पढ़ना थोड़ा जा औखा होंदा है, तो एंटर करके अपने नाम शामिल कराया करो। सहारनपुर तो अगले दोस्त आए ने जी, आशा नारंग, सोनाली नारंग ते सुरेश नारंग होरी। पिंड कातरों तो अमरीक सिंह, औलक जसविंदर, सुखमनप्रीत, जसन बिंदर ते आओ जी सारे दोस्तों सुनवादे आरिफ लोहार की आवाज़ के गीत।

तो। और कृष्ण बागला, आशा बागला, साजन बागला, प्रिंस रजनी आंचल ते वंश बागला, लाल चंद विलेज ते कलेंदर तो। और अगले दोस्त ने जी विलेज चांद मारी तो मंगत राम, जगदीश राणी, संदीप मिधा, ममता राणी, अभिषेक मिधा ते दिव्या। और आखिरी मैसेज असी शामिल कर रहे हैं जी जी आर पॉल ते पूरा पॉल परिवार सराबा नगर जलंधर पंजाब तो। ते इस प्रोग्राम दा आखिरी गीत आ रहा है जी एमी विर्क दी आवाज़ दे विच। लो जी इंजॉय करो।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ
1: ਨਮਸਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ये चर्चा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुई दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग रक्षा और सुरक्षा साझेदारी तथा क्षमता निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इथियोपिया की भागीदारी की सराहना की और कहा कि इसकी उपस्थिति से ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को और मजबूती मिली है प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग

0: मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी आज देर शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बेलारूस के विदेश मंत्री मार्क्सिम रिजनकोफ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, फिनटेक, महत्वपूर्ण खनिजों तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले आज सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस बीच सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। और इस बीच खबर मिली है कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज शाम उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय शगुन चोपड़ा।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। इस वेले दोपहर के 12:05 हो चुके हैं। वेला ए प्रोग्राम वसदे वेड़े का, आओ सुनते हैं।

0: करण प्रताप सिंह, मनरीत कौर, तरनवीर अते मनराज। यह जी रायपुर डब्बा तो मक्खण सिंह फौजी, बूटा, बल्ली, सनी अते बाकी सारा परिवार। यह चौधरी मार्केट अबोहर रोड मलोट तो कप्तान सिंह, सैकटरी शमशेर सिंह, धर्मिंदर शर्मा, रविंदर राधे ते हरफूल।
1: और ये सारे अलका जी कहते कि सानू ए एस कंग दगा या कोई गीत सुना दो, तो आओ सुना दें जी।
0: जी

0: करता। ये सब फ्रॉड है, इसलिए घबराओ ना। पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आन वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जा वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्ना नु पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नु रिपोर्ट करो।
1: हेलो मम्मा।
0: हाय।
2: आरबीआई कहिंदा है
0: जानकार बनो, सुचेत रहो।
3: जी अलका जी, वैसे दिल तो सच्ची नहीं किसी का दुखाना चाहिए।
4: बिल्कुल, कहिंदे साडे इस गीत ने ना एक माहौल जिहा बनाता भी टेंशन नू करो बाय बाय, जिंदगी नू कहो कि आओ जी ऐश करिए, इंजॉय करिए, खाइए पीए ते असी खुश रहिए, क्योंकि जिंदगी दे विच खाना पीना हंसना खेडना बहुत जरूरी है।
3: बहुत जरूरी है ना। ते पर साडियां भैणां ना कई बारी अंगहाली कर जांदियां, पूरे टब्बर दा ध्यान रखदे रखदे अपना खाना पीना जिहड़ा है
4: भुल
3: जांदियां ने। सो जरूर ध्यान रखना है जी, खाओ पियो ऐश करो,
4: पौष्टिक खाओ।
3: जी बिल्कुल,
4: जिहड़ी तुहाडी सेहत भी सही रहे।
3: जी अगली फरमाइश भी पढ़ दिंदे आ जी।
4: बिल्कुल,
3: अगली फरमाइश आई है, कहिंदे जी सानूं सुरिंदर कौर ते प्रकाश कौर दी आवाज़ दे विच गीत सुना दिओ। पटेल नगर मलोट तो फरमाइश लैके आए ने जी डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप जजौरिया, बेबी आरसू जजौरिया, चकला बाजार समाना तो पप्पू राजा खुश दिल, संगीता जिंदल ते हंसमुख जिंदल।
4: जी मंडी हरजी राम मलोट तो महेश गर्ग, सुषमा गर्ग ते जशन गर्ग, मलोट तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, जिला मुक्तसर पिंड मौला तो पाल गिल, गुरदयाल गिल, साधु गिल, दीशा ते उन्होंने बहुत सारे साथी, मोहम्मदपुर सोतर ढाड़ी रतियां तो जीवन सिंह बूक, शंटी बूक, सिमरन बूक, कौशल्या रानी, गुरछिंदर बहू बूक, बब्बू बूक, कुलदीप बूक, कीरत बूक, भूषण खेड़ा ते बलवीर जशन, इन्हां सारयां दी मिली जुली फरमाइश ते सुनदे जी सुरिंदर कौर ते प्रकाश कौर दी आवाज़ च एक गीत।

0: जी ज्योति जी, गीत सुन के ना ऐदां लगदा कि असीं अपने पुराने पंजाब च चले गए हाँ। जदों पुराने पंजाब दे लोक गीतां दा सिर्फ ये गीतां दे सुर नहीं सी हुंदे, बल्कि उन्हां दे विच हुंदी सी मिट्टी दी खुशबू, रिश्तियां दी मिठास, मुटियारां दीआं अदावां ते पंजाबी जिंदगी दी खुली डुली रौनक, है
1: बिल्कुल
0: ना। हुण कित्थे रह गईआं ओह खोईआं, ते कित्थे रह गए ओह रस्ते जिथे असीं पैदल तुरदे हुंदे सी। पर ये सारियां चीज़ां जदों असीं गीतां च सुणदे आ ना, तो साडियां यादां दे विच दुबारा ती ताज़ा हो जांदियां।
1: बिल्कुल, एक बारी फिर तो असीं अपने विरसे दे नाल जुड़
0: जुड़
1: जाने
0: जाने
1: हाँ
0: हाँ
1: जी,
0: बिल्कुल,
1: ते हुण अपने स्रोतियां दे नाल वी जुड़
0: असीं
1: जाने
0: जुड़े
1: हाँ।
0: होए हाँ जी अपने स्रोतियां दे
1: और
0: नाल
1: जिन्हां ने खत लिखे है, जिन्हां नूं
0: जी।
1: इंतज़ार है कि साडी वारी कदों आएगी जी, ते लो जी फिर खुरजा उत्तर प्रदेश वालियां ने तां सानूं चार चार खत लिख के भेज दित्ते है। और इन्हें जी तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा ते अंकुश अरोड़ा, बठिंडा रोड डबवाली तो राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग ते मोहित नारंग, महज गेट नाभा तो सोमदत्त, कैरव, ज्योति राणी ते गुरमन्नत सुनना चाहते ने जी ये गुरदास मान की आवाज़ च। ते अलका जी तुहाडे को भी बहुत सारे खत ने।
0: बिल्कुल जी, मेरे को भी बहुत खत ने। यह खत है जी मलोट कैंप पंजाब तो सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण गरोवर ते रमेश मिगलानी। यह है लोहगढ़ ठाकरा वाला फिरोजपुर तो स्वरण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह गुरलाल
1: जी
0: ते अविराज सिंह, गुरमान सिंह पोत्रा, गुरनोर सिंह। ते ये चिट्ठी है जी सहारनपुर तो आशु नारंग, सुरेश नारंग, शालू, सचिन ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। इन्हां सारे दी फरमाइश ते सुनदे हां जी गीत गुरदास मान दा।

0: जी श्रोते सुन रहे ने जी अपने मनपसंद गीत ते सिलसिला चल रहा है झांझरां दे बोल और अगली फरमाइश पढ़ दिंदे हां जो कि आई है जी मिस पूजा दे गाए गीत लई पिंड गोविंदगढ़ माझी वाला श्री करनपुर राजस्थान तो राजू टुटेजा खुशदिल उर्मिला टुटेजा गुड्डू जिन्नू मनु आदित्य भूमि राखी अमृत बड़वाल शिव सेठी करनपुरी ते इस्माइल टुटेजा हनुमानगढ़ तो जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जे एस नायक शोभा नायक ते पूरा डागला परिवार
1: जी बागा पुराना तो सतनाम सिंह रखरा अमरजीत कौर रखरा पोतरा तेग फतेह सिंह रखरा ते पोतरी जस गुण रखरा अनारकली बाजार जगराओं तो सुनील पाठक कोमल पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा आशीष मल्होत्रा बेबी गव्या मल्होत्रा ते बेबी सुच्चा पाठक ते भाई सुच्चा पाठक इन्हां सारे दी फरमाइश ते सुनदे हां जी गीत मिस पूजा दा।

0: जी, ते हुण जिहड़ा साडा अगला ते मैनूं लगदा आखरी पेशकश है ओहदी फरमाइश लैके हाजिर हाँ जी। पिंड कैरों जिला तरन तारण तो गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शमी रजनी आकाशदीप अनहद ते अमरगढ़ तहसील शादो शाह तो कुलवंत मान, लखविंदर मान ते खुशप्रीत कौर मान।
1: और ये फरमाइश है जी डब वाली हरियाणा तो, जेके बकौलिया श्रीमती सुनीता बकौलिया, संजय अनिल ते मीनू बकौलिया, गांधी
0: जी
1: चौक रोपड़ तो हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक ते मीका विरक, पिंड जंडवाल चढ़त सिंह तू, राकेश नरेश जगदीश अनिकेत अनु अमन सुनेहा सुमन ममता ते सरोज रानी।
0: जी मुलापुर मंडी तो किशन गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन, दीपक जैन ते मनजोत सिंह, इन्हों के सारे की मिली जुली
1: फरमाइश
0: फरमाइश से सुनद्या एम ए विरकता ए
1: जी
0: गीत।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇਲੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू होगा। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मौजूद हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, प्रधानमंत्री ने अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है इस शिखर सम्मेलन से अलग, और अभी और किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का आज कार्यक्रम है?
2: हाँ जागृति, आज का दिन राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से करीब 1.5 घंटे बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह से ही ब्रिक्स के सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ

0: बिश्केक की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर रुचि जताई है। इसके अलावा इथियोपिया ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर चर्चा हुई। जागृति आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की पहली यात्रा है। जी जागृति
1: जी, धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। और इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेसियस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से क्वांगचो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। ये सेवा ऐसे समय फिर शुरू हो रही है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन ऐसे समय में बंद की गई है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली की चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज से आकाशवाणी दाए जलंधर केंद्र है। दोपहर दे 1:05 हो चुके ने। आओ हुण जानदे आं अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।
3: कहती है तो यूं ही जी लेंगे।
2: दोपहर 1:15 प्रोग्राम पेश

0: देंगे
1: शाम 4:30 रोजाना प्रोग्राम होएगा गुरबाणी विचार शाम 6:30 तुसी सुनोगे देहाती प्रोग्राम जिस विच होणगियां काम दियां गल्लां आज दे इस प्रोग्राम दे विच पंजाबी नाटक कीड़ियां दी पौण दा पहला भाग प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7:00 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वालों स्पॉन्सर प्रोग्राम पेश किया जाएगा किसान वाणी शाम 7:40 ते साहित्य सुधा प्रोग्राम तहत तुसी सुनोगे वार्ता संस्कृत साहित्य विच उत्तम समाज की कल्पना वार्ताकार होंगे डॉक्टर राजकुमार शाम 7:50 ते स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होएगा लम्हे

0: रात 8 बजे प्रोग्राम पेश किया जाएगा जिंदगी हसीन है। रात 8:15 बजे सुर सरिता प्रोग्राम दे विच तुसी सरवन करोगे शब्द कीर्तन भाई प्रभप्रीत सिंह शांत ते साथियां पासों। रात 9:15 बजे प्रोग्राम आएगा स्पॉटलाइट साढ़े दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 बजे दिल्ली केंद्र तो ही प्रसारित होएगा प्रोग्राम संस्कृति भारती ते रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। आज इस प्रोग्राम दे विच तुसी सुनोगे अश्विन एम डालवी दा सुरबहार। इस अनाज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समा इस तो इलावा हिंदी पंजाबी ते अंग्रेजी समाचार अपने अपने समय ते प्रसारित कीते जाणगे। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजय ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: की के है तुहाडी लॉटरी निकली है? टिकट खरीदी सी? नहीं, अच्छा तुहानू फोन आया है कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया ते हुण आधार नंबर पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
5: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर के उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले दोपहर दे 1:10 होने जा रहे ने। वेला हो गया प्रादेशिक खबरां दा, तुसी सुनोगे।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी जगजीवन सिंह तो प्रादेशिक खबरां सुनो। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित धार्मिक समागमां दी लड़ी तहत अज अमृतसर विच पुरातन परंपरा अनुसार नगर कीर्तन सजाया गया। गुरद्वारा श्री रामसर साहिब तो सचखंड श्री दरबार साहिब तक सजाए गए इस नगर कीर्तन की रवानगी मौके पूरा माहौल गुरबाणी कीर्तन ते सतनाम वाहिगुरू के जाप नाल गूंज उठा। गुरद्वारा श्री रामसर साहिब विखे सवेर तो ही संगतां की आमद शुरू हो गई सी। गुरबाणी कीर्तन अरदास ते धार्मिक समागमां तों बाद पूरी गुरमियत मर्यादा नाल पावन स्वरूप नूं सुंदर पालकी साहिब सुशोभित करके 5 प्यारियां की अगवाई विच नगर कीर्तन की रवानगी की गई। इस मौके श्री दरबार साहब के ग्रंथी श्री सिंह साहिब ज्ञानी अमृत सिंह ने कहा कि भादरों सुदी एकम 1661 बिक्रमी 1604 ईस्वी में सचखंड श्री दरबार साहब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश किया गया सी।
7: ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਉਣੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁੱਟ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ।
6: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭੱਲੇ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਉੱਧਰ

जय हिंद फौजी वीरों, पेश है थोड़े मनोरंजन लिए कुछ हिंदी फिल्मी गीत। प्रोग्राम का आगाज करते हैं फिल्म प्रतिज्ञा दे इस गीत दे नाल, आवाज़ जिसनों दिती मोहम्मद रफ़ी ने, गीत दे बोल आनंद बख्शी दे ते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दा।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।

0: संक्रमित सुई सिरिंज साझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
1: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
2: आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई। तो फौजी वीरों अगला गीत पेश है थोड़े लिए फिल्म चोर मचाई शोर तो आवाजा किशोर कुमार आशा भोसले ते साथियां दिया। इस गीत दे बोल लिखे इंदरजीत सिंह तुलसी ने ते इसनु संगीत बद्ध कीता रविंद्र जैन ने।

0: ਨਾਲਵੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ੇਖ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਿਆਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੇ ਮਿਨ ਹੁੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਮ 6:20 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। भारत की सदारत में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग नई दिल्ली में शुरू होने वाली है। दो रोज़ा सरबराह मीटिंग में आलमी रहनुमाओं की शिरकत के दरमियान आलमी तर्ज हुक्मरानी, कसीर जहती तजारत, सिक्योरिटी और सप्लाई चैन से मुतालिक उमूर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के सदर शी जिनफिंग के साथ दो तरफ़ा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी ने मलेशिया के हमनसब अनवर इब्राहिम के साथ दो तरफ़ा बातचीत की। उन्होंने आसियान भारत ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मलेशिया की मुसलसल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म मोदी ने इथोपिया के अपने हमनसब डॉक्टर आबी अहमद अली अबूजबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहियान और वियतनाम के वज़ीर आज़म ले मिन हुंग के साथ दो तरफा मुदाकरा किए। यमन में हौथी बागियों ने बहरा अहमर में वाक़ अहम तजारती गुजरगाह के कलीदी अहमियत के हामिल जजीरों पर कब्जा कर लिया है, जिससे बहरा अहमर के अहम बहरी तजारत गाह पर उनकी गिरफ्त मजबूत हो गई है। सऊदी अरब ने हमले के बाद कलीदी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हॉकी में भारतीय ख्वातीन की टीम ने जनूबी कोरिया को 1-5 से शिकस्त देकर जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। यह मुकाबला चीन के शहर मोची में खेला गया। और यूएस ओपन टेनिस में दिफाई चैंपियन आरियाना सबालिनका आज रात न्यूयॉर्क के फाइनल में दूसरे दर्जे की खिलाड़ी एलेना रैबाकिना का सामना करेंगी। अब खबरें तफसील से। भारत की सदारत में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग नई दिल्ली में शुरू होने वाली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर इथोपिया के अपने हमनसब डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ दो तरफ़ा बातचीत की। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा कलीदी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इक्तसादी ताउन, दिफा और सलामती के शोबे में शराकतदारी और सलाहियत साजी समेत अहम शोबों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में इथोपिया की शिरकत को सराहा और कहा कि इथोपिया की मौजूदगी ने आलमी खित्ते जनूब की इज्तमाही आवाज़ को मजीद मजबूत बनाने में मदद दी है। वज़ीर आज़म ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर जो भारत की सदारत में मुनाकिद हो रही है, मलेशिया के अपने हमनसब अनवर इब्राहिम के साथ दो तरफ़ा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने तजारत व सरमायाकारी, दिफा, सिक्योरिटी और आवाम से आवाम के रबते समेत

0: दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के उस देरीना मौकिफ को दोहराया कि सभी मामलात का हल बातचीत और सफारतकारी के जरिए ही निकाला जाना चाहिए। सऊदी अरब ने अपनी अहम मशरकी मगरबी तेल पाइपलाइन को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। ये इकदाम मस्कूरा तेल पाइपलाइन को ड्रोन हमले का निशाना बनाए जाने के एक दिन बाद किया गया है। सऊदी अरब की वजारत तवानाई ने कहा है कि पाइपलाइन को एहतियाती इकदाम के तौर पर बंद कर दिया गया है। मशरकी मगरबी तेल पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आबनाए हुरमुज में रुकावट के बाद इसी पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरब को अपना तेल बरामद करने में मदद मिल रही थी। यह सूरत हाल ईरान की अमरीका और इसराइल के साथ जारी जंग के दौरान पैदा हुई है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ में आज इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी कल तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। वहीं उड़ीसा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी भारत के हिस्सों में भी उसी के मौसमी हालात रह सकते हैं। हॉकी में भारत ने आज चीन के मौके में जनूबी कोरिया को 1-5 से शिकस्त देकर खवातीन जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। US ओपन टेनिस के मर्दों के सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में 8वें दर्जे के खिलाड़ी बेन शेल्टन का सामना आला दर्जे के खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवेरेव से होगा। जर्मनी के जेवेरेव ने आज सुबह खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में रूस के खिलाड़ी कैरेन खाचानोफ को 6-3, 7-6 और 7-6 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में बेल शेंटर ने अपने हमवतन 11वें दर्जे के अमरीकी खिलाड़ी फ्रांसिस को 4-6, 6-3, 6-3 और 7-5 से हराया। ख्वातीन के सिंगल्स मुकाबलों में दिफाई चैंपियन आरियाना सबालिनका का आज रात न्यूयॉर्क में दूसरे दर्जे की खिलाड़ी एलेना रेबकीना के साथ खिताबी मुकाबला होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। भारत की सदारत में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग नई दिल्ली में शुरू होने वाली है। दो रोज़ा सरबराह मीटिंग में आलमी रहनुमाओं की शिरकत के दरमियान आलमी तर्ज हुक्मरानी, कसीर जहती तजारत, सिक्योरिटी और सप्लाई चेन से मुतालिक उमूर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी ने मलेशिया के हमनसब अनवर इब्राहिम के साथ दो तरफा बातचीत की। उन्होंने आसियान भारत ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मलेशिया की मुसलसल हिमायत को सराहा। वजीर आजम मोदी ने एथोपिया के अपने हमनसब डॉक्टर आबी अहमद अली अबूजबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद जायद अन्नहियान और वियतनाम के वजीर आजम ले मिन हुंग के साथ दो तरफा मुदाकरात किए। यमन में हौसी बागियों ने बुहेर अहमर में वाक़ अहम तजारती गुजरगाह के कलीदी अहमियत के हामिल जजीरों पर कब्जा कर लिया है, जिससे बुहेर अहमर की अहम बहरी तजारतगाह पर उनकी गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई है। सऊदी अरब ने हमले के बाद कलीदी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और US ओपन टेनिस में दिफाई चैंपियन आरीना सबालिन का आज रात न्यूयॉर्क के फाइनल में दूसरे दर्जे के खिलाड़ी एलिना रेबकीना का सामना करेंगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी जलंधर ते जारी है प्रोग्राम फौजी वीरा लई। फौजी वीरो, एक बारी फिर तो आप सब दा बहुत बहुत स्वागत तुहाडे अपने ही प्रोग्राम दे विच। ते लो जी, गीत सुनो फिल्म राम लखन तो, आवाज़ा लता मंगेशकर ते साथियां दियां। गीत दे बोल आनंद बख्शी दे ते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल दा।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबूधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। 2 दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश

0: हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
1: जी जागृति, देखिए।
0: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और इस सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
1: जी जागृति, देखिए इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है।
0: जी,
1: विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। ये नेता इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह ये भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक GDP में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी
0: जागृति। जी धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी जिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
0: जी,
2: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनफिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति।
0: जी आनंद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति

0: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगशो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थीं, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
2: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गो में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2,000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
3: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव

0: का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधेश श्री।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही रहने का। बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग,
2: समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबुधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले दोपहर दे 2:03 हो चुके ने। हुन पेश है प्रोग्राम रंगली धरती। आज दे इस प्रोग्राम दे लोक गायक ने निर्मल सिंह धारीवाल।

0: जी गुरदास मान होने दे आवाज च गीत से ते अगला खत असी ले लेने हैं जी। ये खत सानू आया है नेड़े धर्मशाला पिंड कोटली अबलू श्री मुक्तसर साहब तो सीता राम केसरी सुखा सिंह सरपंच कोठे ढाबे वाला देवी कोटली किंदा कुंडा फार्म नीला सिंह पिंड गंगा काला हलवाई रूप सिंह सर्विस स्टेशन रावा नंबरदार ते धर्मा कोटली होना दा एक खत है जी। अगला खत साढ़े को आया जी गांधी चौंक रोपड़ तो हरदेव मिक्का बलविंदर विरक जेतक विरक ते मिक्का विरक इन्हों का इन्होंने लिखा कोई भी गीत सुना दो। तो अगला खत साढ़े को है जी पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका सोन सिंह बुक निशान बुक सीरत कौर कीरत कौर दादी जसवंत कौर राज मिस्त्री पिंड सोहाणा बोदला तो सुरिंदर कौर बुक बलविंदर कौर बुक नौ रीता बाई तो अमर लाल पोस्टमैन। तो अगला खत साढ़े को हैगा जी पिंड सलामा वाले तो भी है जी एक खत जिला फाजिलका सोन लाल राठी ओम प्रकाश राठी शगन लाल राठी पोत्री जश हनु गाठी लवकुश वर्मा अमनदीप गौड़ गौड़ कंचन विराट विराट या विरक की लिखा जी विक्रम विरक कुलदीप टिंगरा पिंड कुडियाना बाबू सिंह महने वाला छत्रपाल सिंह खंगूड़ा गुरमेज सिंह विरक विरक है जी लगता लिखा हुआ पिंड कमाल वाला रणजीत कौर पट्टी बोर्ड सिंह पट्टी काका पट्टी ते कहते जी कोई भी गीत चला दियो जी धन्यवाद तुहाडा बहुत बहुत तुहाडा भी खत लिखण लई बहुत बहुत शुक्रिया जी। आओ सुनते हाँ इन्हां सारिआं दी पसंद आ इह गीत
1: देखो नी कुड़ियो किन्ना सोना मुंडा खड़ा सुनियो तुहाडा नाम की है
2: नाम ता मेरा जस्सी सिद्धू आ क्यों
1: ते तुसी केड़े शहर च रहने हो
2: शहर शहर ता साडा जलंधर है
1: ते तुसी चंडीगढ़ की करदे हो

टाइम हो चुका है, इस दे नाल ही प्रोग्राम दा समा खत्म हो रहा है जी। इजाजत दिओ शोभा खेर नूं, कल दा प्रोग्राम नवां लैके हाजिर होंगे नवे साढ़े आठ जी, ताकि तुहाडीआं होर चिट्ठियां ते गीत चिट्ठियां पढ़ियां जाण ते गीत सुनाए जाण। प्रोग्राम खत्म करन दी आग्या दिओ।

0: पेश ने मुख खबरां। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज नवी दिल्ली दे भारत मंडपम विच शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली विच इथोपिया ते मलेशिया दे प्रधानमंत्रियों समेत कई ब्रिक्स नेतावां नाल दुवली गलबात कीती। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ने आज अपने 7 साल पूरे कर ले ने। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दे दूजे पड़ा तहत 18,70,000 मकाना नूं मंजूरी दिती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश पुरब आज पूरी धार्मिक श्रद्धा और उत्साह नाल मनाया जा रहा है। सारागढ़ी की लड़ाई की याद विच आज फिरोजपुर विखे सारागढ़ी के शहीदों नूं श्रद्धांजलि भेंट की गई। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और विदेशों च भगौड़िया की भाल करन वाले विभाग ने केंद्रीय एजेंसिया के तालमेल नाल मोलडोवा गणराज तो एक भगौड़े अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दालम नूं भारत वापस लियाउण विच सफलता हासिल की है। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच कल तो 15 सितंबर तक कुछ थावां ते भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अते हॉकी विच भारत दक्षिणी कोरिया नूं 5-1 नाल हरा के महिला जूनियर एशिया कप हॉकी टूरनामेंट दे फाइनल विच पहुंच गया। इह सन हुण तक दीआं मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम के 4:02 हो चुके ने। हुण पेश है खेड संसार।
1: खेड संसार।
2: खेड संसार प्रोग्राम सुनने वालों नूं पूजा दा नमस्कार। अज दे खेड संसार प्रोग्राम विच तुसी सुनोगे अंतरराष्ट्रीय पहलवान सागर सिंह ते उना दे कोच मनप्रीत सिंह नाल एक मुलाकात ते एदे नाल नाल खेड सरगर्मियां बारे भी जानकारी मिलेगी। खेड खबरां विच आओ फिर सब तो पहला सुनिए कि एक साधारण परिवार चों उठ के सागर सिंह अंतरराष्ट्रीय कुश्ती दे सिखर तक किद्दां पहुंचिया। सागर सिंह ते मनप्रीत सिंह नाल गलबात कर रहे ने वीरेंद्र सिंह।
1: आकाशवाणी जलंधर दे खेड संसार प्रोग्राम च असीं तुहाडी मुलाकात वख-वख खेडां दीआं वख-वख शख्सियतां दे नाल करांदे रहिंदे आं। सो इसे लड़ी इसे सिलसिले च अज दे खेड संसार प्रोग्राम च तुहाडी गलबात करा रहे हां जी सागर सिंह होरां दे नाल, जिहड़े कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे पहलवान ने। अंडर 23 वर्ल्ड रैसलिंग चैंपियनशिप विच ये भारत की प्रतिनिधता करन जा रहे हैं और इन्हां दे नाल इन्हां दे कोच मनप्रीत सिंह अज दे साडे खेड संसार प्रोग्राम दे मेहमान ने। सो इन्हां दे नाल अज दे प्रोग्राम च गल्लां बातां चलणगियां। सागर सिंह, मनप्रीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जी साडे स्टूडियोज।
3: थैंक यू सर, मेरे वालों ते मेरे पहलवान सागर सिंह वालों सारे ही आकाशवाणी सुन रहे स्रोतियां दा धन्नवाद, जो असीं आपदी गल कुश्ती दी ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ
1: ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਗਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਗੱਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ 'ਚ?
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ।
1: ਅੱਛਾ।
4: ਅਤੇ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਸ ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਥੱਕ ਥੁੱਕ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ।
1: ਅੱਛਾ ਸਾਗਰ, ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए या लीज ते दिते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दिते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले शाम दे 4:30 बज रहे ने। आओ हुण तुहानूं लै चलदे हां श्री दरबार साहिब अमृतसर जिथों तुसी शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे।

तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरवाना, हर नानक साच वखाना। इस शब्द का गायन किया सी भाई निर्मल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने तो पहला दे चार गुरु साहबान तिना दी बाणी अपने वलों उचारी हुई बाणी 15 भगतां 11 अर्षी पट्टां अते गुरसिखां दी बाणी नूं संग्रह करके संकलित अते संपादन कीता ते पोथी दा रूप प्रदान कीता। आप जी ने भादरों सुदी एकम संवत 1661 विक्रमी नूं सचखंड श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर विखे पहली बार आद

0: ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश ब्रह्म ग्ञानी बाबा बुड्ढा जी नूं पहले ग्रंथी नियुक्त करके उन्हां दे कर कमलां द्वारा करवाया। बाबा बुड्ढा जी ने पहली बार प्रकाश करके हुक्मनामा लिया, जिस दियां तुना अज भी इथों दी फिजा विच पसरियां होईयां ने। सूही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने ऐलानिया तौर ते फरमाया, पोथी परमेसर का थान। सुनदेया प्रोफेसर इंदरजीत सिंह होरां पासों वार्ता, पोथी परमेसर का थान।
1: विचार अधीन पंक्ति, शहीदां दे सिरताज, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अंग 1226 ते सुभायमान है। इस पंक्ति विच गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं जग दी जोत ते परमेसर दा साकार रूप कह के वड्याउंदे हन। संसार दे समुच्चे धार्मिक ग्रंथां विचों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ही एक अजिहा धार्मिक ग्रंथ है जिस नूं किसी महापुरश ने अपने कर कमलां नाल संपादित कीता होवे। गुरु साहिबान द्वारा रचित बाणी नूं एक पोथी दे रूप विच संग्रह करके गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु दी उपाधि बख्शिश कीती गई। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संपादना श्री गुरु अर्जन देव जी ने कीती अते इस पवित्र ग्रंथ नूं लिखण दी सेवा भाई गुरदास जी ने कीती। 1430 पन्निया दे इस वड अकारी ग्रंथ विच 15 भगतां, 11 भट्टां अते गुरसिखां दी बाणी शामिल है। श्री राग तों लैके जय जयवंती राग तक 31 रागां विच रचित बाणी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज कीता गया है। गुरु अर्जन देव जी ने इस अदुत्ती कार्ज नूं बड़ी ही बारीकी ते सुनिश्चता नाल निभाया। उन्हां ने बाणी नूं दर्ज करन लई एक निश्चित ढंग दी वरतों कीती। सब तों पहलां शब्द रखे, फिर अष्टपदियां, छंद, वारां अते फिर होर काव्य रूपां नूं रख्या गया। हर भाग विच गुरु साहिबान दीआं रचनावां तों बाद उसे ही रूप विच भगतां दीआं रचनावां दर्ज कीतीआं गईआं। लिखण वास्ते गुरमुखी लिपी दा प्रयोग कीता गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सब तों पहला प्रकाश भादरों सुदी एकम 1661 बिक्रमी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर विखे कीता गया। बाबा बुड्ढा जी नूं सब तों पहले ग्रंथी थापिया गया। इस वड अकारी ग्रंथ विच 5 गुरु साहिबान, 15 भगतां, 11 भट्टां अते गुरसिखां दी बाणी शामिल है। सिख परंपरा अनुसार गुरु शब्द गुरु नानक देव जी तो लै के गुरु गोबिंद सिंह तक केवल 10 गुरुआं लई ही वरत्या जांदा सी। 1708 विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने ज्योति जोत समाउण तो पहलां यह गुरु पदवी ग्रंथ साहिब नूं दे के अग्गे तो किसी भी देहधारी गुरु वास्ते पूर्ण तौर पर विराम लगा दिता। कोई भी जीवित व्यक्ति चाहे वह किन्ना भी पवित्र ते सत्कारित क्यों ना होवे, वह गुरु पद का अधिकारी नहीं हो सकता। इस पावन ग्रंथ विच श्री गुरु तेग बहादुर जी की बाणी शामिल की गई। लिहाजा 6 गुरु साहबान, 15 भगतां, 11 भट्टां ते गुरसिखां दी बाणी वाले भाई मनी सिंह जी द्वारा रचित श्री ग्रंथ साहिब जी नूं साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब नांदेड़ विखे गुरता गद्दी प्रदान कर दित्ती सी। गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं 10 गुरुआं दी जीवंदी जागदी सदीवी प्रगट देह वजों सत्कार दिता जांदा है। गुरु घरां विच अरदास तों बाद ये दोहरा पढ़िया जाता है, आग्या भई अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द मैं ले। गुरु साहिब ने रूहानियत दा चमन पोथी परमेसर का थान चोणवें फुल्लां दा एक गुलदस्ता तैयार कीता है। सच्चाई दी महानता अते वंड वखरेवियां वाले देश विच मनुखी समानता अते बराबर

पोथी परमेश्वर का थान, साद संग गावे गुण गोबिंद पूरन ब्रह्म ज्ञान। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद आकाशवाणी संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, दिल्ली घोषणा पत्र में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है?
3: देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव पर ब्रिक्स देशों ने चिंता जताई। ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने दुनिया में सैन्य खर्च में लगातार हो तेज बढ़ोतरी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा नेताओं ने कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान बहुपक्षीय

0: सहयोग के जरिए होना चाहिए, जिसमें सभी देशों के अलग अलग विचारों और हितों का जो है सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा सतत विकास, भूख और गरीबी खत्म करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर भी जोर दिया गया। वहीं पश्चिम एशिया में के तनाव पर भी ब्रिक्स देशों ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। वहीं आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाया है कि आतंकवाद का कोई रूप अपराधी के पूरी तरह अनुचित है। देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों के भी कड़े शब्दों में निंदा की, जिसमें लगभग 20 लोगों की जान चली गई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। जी दीपेंद्र
1: जी, धन्यवाद दीपेंद्र। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं द्वारा इस अवसर पर 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने पर आधारित सत्र के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने समूह की संस्थागत नीति गति सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए एक नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समूह की अपनी कार्यप्रणाली से शुरू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बीच कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और यूरेशियन आर्थिक संघ के अध्यक्ष कासिम जोमार्त तोकायेव ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और बीमारियों के खतरे का समय रहते पता लगाने की क्षमता मजबूत होगी। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि इस क्षेत्र में आजीविका का साधन रहे फलों के बाग अब एक ऐसी नीति के तहत विनाश के कगार पर हैं जो भूमि और आजीविका दोनों के लिए खतरा है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ एफएम बैंड डीटीएच की आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो हुण सुनो साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वीरवा। शाम 6:30 बजे सुनोगे देहाती प्रोग्राम। अज दे इस प्रोग्राम दे विच काम दीआं गल्लां तों इलावा पंजाबी नाटक सुनोगे कीड़ियां दा पौण। इस तों अलावा गीत संगीत होएगा। कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा। शाम 7 बजे सुनोगे प्रोग्राम किसान वाणी। ₹7:40 ते प्रोग्राम साहित्य सुधा विच डॉक्टर राजकुमार दी वार्ता सुनोगे संस्कृत साहित्य विच उत्तम समाज दी कल्पना।

रात 8:15 प्रोग्राम सुरसरता विच शबद कीर्तन सरवण करोगे। कलाकार होंगे भाई प्रभप्रीत सिंह शांत ते साथी। रात 9:15 साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे समाचार संध्या। 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट। रात 9:30 साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे प्रोग्राम संस्कृति भारती। रात 10:00 साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे प्रोग्राम संगीत अखिल भारती। प्रोग्राम कलाकार होंगे अश्विन एम दलवी। हिंदी पंजाबी ते अंग्रेजी खबरां आपो अपने समय मुताबक नशर कीती जाणगियां। एसी साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा। आउन सुणदे इक देश भगती दा गीत।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही।

0: राजा आज तू कल्ला ही बाहां लमकाई आ गया, ना रानी क्यों नहीं आई? छत्ती काम पे है ओदे सवार नाले।
1: ओदा तेनू की दसां भाभी, पत्थर दी सिल बनी पई है मंजे ते, ना हिले ना जुले।
0: ना होया की या ओनू आखिर? मैं हरमीत हाथ काड़ा बना के भेज दियां करड़ा जा ओनू, वेख दियां भला ओदे नाल ओ किद्दां नहीं आउंदी।
2: बीरू ताता, तंतु ना हस्पताल च दाखल है, ओदी हालत बली खराब है।
1: होया की है?
2: बोता ता नहीं पता, कहंदे एक्सीडेंट हो गया।
1: ओ, भाभी अपनी दरानी नूं दस दी, मैनूं हुण जाणा पड़ा।
0: हाँ वीरू, तू छेती जा, मैं कुछ पैसे भेज दिंदी हां किसे दे हाथ।
3: तू आ गया डैडी, सत श्री अकाल।
0: पैरी पैनी है डैडी जी।
3: देखियो देखना प्यो, बह जाओ डैडी जी, बह जाओ।
1: ओए नु होया की आखर?
3: ओ ता ए होश करू ता दसू, डॉक्टर बहुत लो आ गया, बहुत लो आ गया कही जांदा है।
1: ओ मैं तो हुन फसया हां, पढ़ के बाहरलियां दी कुड़ी दा ब्याह है, और तो थोड़ी मामन जी तो नहीं उठ रही, ओनू भी देखना पैना। मैं जाना किसी के हाथ कुछ पैसे भेजदा फड़फड़ा के, तुसी दा ख्याल रखियो, मैं मारदा गेड़ा। मैं कला कला किधर जावा, हुण तां मंजा छड़ देना सी।
4: तू कुलवंत बारे दस, की हाल है उहदा?
1: बस कुलवंत जाने जाओ जाने, और किसी ने कोई इलम नहीं उहदा। अच्छा हरमीत दी विदायगी तक उठ जाएगी, हुण चलिया, उहनां दा सुनेहा आया है।

0: अंकल की हाल है कुलवंत का?
1: कुछ चिर पहले आया सवाल तेरी दादी ने किया सी, जो जवाब उन्होंने देता हुई तेनों दे रहा। बेटा कुलवंत जाने जा रब जाने।
0: अंकल जी सारा पिंड मदद लिए पब्बा पार हो चुका है, पर ये भी काफी नहीं, गल मती दे भी वसों बार है।
1: वो किवें बेटा?
0: मैनू पता है मती कित्थे काम करता है।
1: हाँ वास्तव ये मेरे भी कुछ नहीं।
0: अंकल जी जे तुसी कहो ते मैं

0: कन्या देवी है पाप ना चढ़ा।
1: थानू ख्याल है भी मम्मी डैडी ना नहीं बनती उन्हां दी।
0: धीए मिलना तू है मैं की करना विच।
1: कुछ नहीं करना अंकल, चुबारे चो पिछले पासे बस उतार देना, तुहाडे नाल ही मोड़ा हूं मैं।
0: ना पुत चोरी वाला काम है, तौबा।
1: चलो ठीक है अंकल, मैं तो तुहानू डैडी अर की समझ के क्या सी।
0: ठीक है रोना हुण चले चला।

0: कार ले खड़ा?
1: मेरी वलैतन सहेली होनी है, तुसी ऐ करो इत्थे ठहर जाओ, मैं उन्हूं कार दे अंदर ही मिल लैनी आ। मैं बाला चिर नहीं लाउणा, मैं बस गई ते आई।
0: अच्छा ठीक है, इदां तेरी मर्जी, छेती मुड़ी पुत्त।

0: प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रयोजक ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नाल छोटे किसानों का भविष्य होएगा सुरक्षित।
2: अते 60 साल की उम्र वालों नूं 3000 रुपए महीने की पेंशन होएगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए तो 200 रुपए महीने की किश्त दे के योजना विच शामिल हो सकते ने 18 तो 40 साल तक के किसान।
2: इस योजना विच सरकार देगी बराबर दा योगदान।
1: सारे किसान भैन भरा इस योजना दे लाभ लई जन सेवा केंद्र विच जान
2: ते अपना नाम मुफ्त विच दर्ज करान।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता दी मेहनत नूं समर्पित, पेंशन नाल सुरक्षित उन्हां दा मान। कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित विच जारी।
3: सत श्री अकाल, नमस्कार अते जय हिंद दोस्तो। मैं रेडियो ते तुहाडी अपनी जसप्रीत हाजिर हाँ तुहाडा ते साडा सब दा सांझा प्रोग्राम लैके किसान वाणी। ते आओ फिर जानिए कि अज किसान वाणी दे विच असीं किस दे उपर गल करांगे। बिल्कुल जी, अज गल होवेगी खेती माहिरां दी सलाह दी, खेती साहित दी, ते नाल होणगीआं खेती खबरां, अते नाल ही होवेगी एक सफल किसान दे नाल गलबात। सो अज दी खेती खबर है कि खेतीबाड़ी अते किसान भलाई विभाग वल्लों किसानां नूं सरकार दीआं वख-वख योजनावां अते खेतीबाड़ी सहूलतां नाल जोड़न लई फार्मर रजिस्टर

0: उम्मीद है तुहानू ये गीत जरूर पसंद आया होवेगा। ते फिर प्रोग्राम नू अग्गे तोरदिया होया किसान वीरो तुहानू दस दईए कि साहित दी किसान जीवन दे विच बड़ी महत्ता है ते साडे किसान वीरां लई बहुत सारा खेती साहित मौजूद भी है। ते फिर आओ करदे हां इस संबंधी गलबात ते सुणाउंदे हां तुहानू डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी दे नाल ए गलबात जो कर रहे ने सुखप्रीत कौर जी।
1: डॉक्टर हरप्रीत जी आप जी दा स्वागत करते हैं।
2: शुक्रिया सुखप्रीत जी।
1: साहित दी गल करिए ता साहित पढ़न नू बहुत है और हर रूप विच साहित जेड़ा है सानू जानकारी दिंदा है। सो जानना चाहते हैं सब तो पहला कि साहित दी की भूमिका है।
2: साढ़े कोल जो कुछ भी इस वेले समाज दे विच हैगा है वह असी वेखिए ता एक किसी पुस्तक रूप दे विच जेड़ा साढ़े तक जो पहुँचता है तो उदों ही असी इनू संभाल सकते हैं। जे असी अपने पुरातन ग्रंथां की गल करिए साढ़े कोल रामायण साढ़े कोल महाभारत साढ़े कोल वेद साढ़े कोल श्री गुरु ग्रंथ साहब ये जिन्हें भी साढ़े धार्मिक पुस्तकां ने इन्हां दे मैं उदाहरण असल तां दे रहा क्योंकि ये युगां तो साढ़े कोल आउंदे ने। कोई भी साहित जिहड़ा वा वह मैनूं लगदा इन्ना पुरातन ते वडमुला नहीं हो सकदा जिन्ने साढ़े ये ग्रंथ ने। तो ये ज्ञान जदों साढ़े कोल पुस्तक रूप दे विच जिहड़ा वह संभालिया जांदा है तां उदों ये कई युग टप के कई जनरेशन जड़िया उन्होंने लंघ के साथ तक पहुँचता तो वह ज्ञान सानू अजे भी रोशनी दे रहा अजे भी सानू चानण दे रहा। इस करके साहित की बहुत वड्डी महत्ता है किसी भी ज्ञान नू संभालन वास्ते ते उसनू अगलिया पीढ़ियां तक पहुँचाउण वास्ते।
1: बिल्कुल जिन्ना साहित जड़ा है महत्वपूर्ण है उन्ना ही है कि इसकी कीमत भी होंदी है कोई ना कोई और खास तौर पर साडे किसान वीरां तक जे कोई साहित पहुँचना है तो कीमत किन्नी होंदी है उसकी।
2: सुखप्रीत जी मैं कीमत नूं ना दो रूप दे विच वेखता। एक तो कीमत यह होंदी आ कि तुसीं मायक रूप दे विच जिहड़ा है वह किन्ने क पैसे अदा कर रहे हो ते दूसरी कीमत यह होंदी आ कि तुहानूं किसे वक्त ते आ के वह किस तरीके दे नाल जिहड़ा वह तुहाडा बचा करदा है ताड़ी सहायता करता है। जे असी उस पक्षों वेखिए तो उस मौके की तो कोई भी शायद कीमत नहीं होंगी जे वह साडा किसे सहायता करता जे साडा कोई बचा कर सकता है
1: जी।
2: पर जे असी पुस्तक रूप दे विच वेखिए तो गुरु अंगद देव वैटनी ते एनिमल साइंस इंस्टीट्यूट लुधियाणा का जिहड़ा साहित्य आ वह बहुत ज़्यादा कीमत का नहीं। साडियां ज़्यादा पुस्तकां जिहड़ियां ने वह 100 रुपया जां उहदे तों घट दियां ने। कोई 2-4 पुस्तकां इहो जिहियां होणगियां जिहड़ियां कोई 250 दी श्रेणी दे विच आउंदियां होणगियां नहीं तो साडियां ज़्यादा पुस्तकां जिहड़ियां वह 100 रुपया जां उस तों घट दियां ने। तो क्योंकि यह साहित्य किसानां तक जाणा हुंदा है पशु पालकां तक जाणा हुंदा है तो असी कोशिश करदे हां कि ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़े वह साडे पशु पालक वीर जिहड़े इस साहित नूं जिहड़ा पढ़ सकण ते अपने पशु जिहड़े आ उन्हां दी बेहतर तरीके नाल संभाल कर सकण
1: और जानकारी भी लै सकण कि इस विच की है और उन्हां नूं वधिया भी लगे
2: जी
1: ज़्यादा जानकारी मिल सके
2: जी।
1: खास तौर ते कई वारी साडे जिहड़े किसान वीर ने या सवाणे वी पढ़दियां होणगियां जा नहीं सकदियां वधेरे किते ते किते उपलब्ध ने ईमेल राही या फोन राही कोरियर राही।
2: पहला तो ये कि साढ़े कोल की कुछ उपलब्ध है
1: जी
2: उस पक्षों असी लगभग 40 तो वधेरे पुस्तक जड़ियाँ प्रकाशित कीतियां हुई ने। इन पुस्तकों के पंजाब दे विच जिस किस्म के भी पशु पाले जाते हैं भावें वह गावां ने भावें वह मझां ने भावें वह सूर ने भावें वह बकरियां ने भावें वह कुत्ते ने भावें वह मच्छी पालन आ उन्हां सारिआं दे उत्ते असी बहुत सधारण जिहड़ी पंजाबी आ उहदे विच जिहड़ा कि जिहड़ी आम लोकां दी समझ दे विच आ सके उस तरीके नाल असी उन्हां नूं तैयार कीता है ते उन्हां नूं प्रकाशित कीता है। ये पुस्तकों की गिणती जिहड़ी आ क्योंकि वक्खो वक्खरे तरीके की लोड़ पैंदी रहिंदी आ सानूं इहदे विच असी कुछ जिवें पशु पालकां दे लई देसी टोटके उन्हां दी गल कीती आ जिहड़ियां असी अपने रसोई दे विच चीज़ां बनाउने आ कोई दुध दीआं वस्तां कोई मीट दे उत्पाद असी उन्हां प्रति वी जिहड़ियां पुस्तकां जिहड़ियां तैयार कीतियां यानी कि यह सारा कुछ जिहड़ा है असी पुस्तक रूप दे विच जिहड़ा वा उह संभालिया होया है तां कि साडे जिहड़े पशु पालक वीर ने भैणां ने उन्हां तक पहुँच सके क्योंकि ये तजर्बे नाल एक गल बड़ी स्पष्ट तौर पर जिहड़ी आ ना वह सामने आउंदी आ कि तुसीं कदी

दिंदा है। उस विच कहा गया है, माता भूमि है पुत्रो अहम पृथ्विया, भाव धरती साड़ी मां है अते असी उसके पुत्र हाँ। अजही भावना समाज को उत्तम अते उच्च शिखर वल लैके जाण लई बहुत ही प्रेरणादायक संदेश है, क्योंकि जो धरती नू अपनी मां समझेगा उस लई उसनू वंडना जां उसनू दूषित करना संभव नहीं। उपनिषदा विच भी मनुख लई अनेकां उपदेश दित्ते गए हन जो समाज लई कल्याण की भावना नाल ओतप्रोत हन। जिवें अज दे युग विच सिक्ख्या खेत्र विच बड़ियां विकृतियां देखण नू मिलदियां हन। पुरातन समय वांग अज अध्यापक दा सन्मान नहीं किया जाता, परंतु कठोपनिषद लिखता है, सहनानुवतु सहनो भुनक्तु सह वीरे करवेह तेजस्विना धीतम अस्तु मां विच्छिद्वा, भाव गुरु शिष्य दोनों इकट्ठे पढ़न पढ़ान वह अपने खेत्र विच मान यश प्राप्त करन। इस तरह कोई भी विद्यार्थी उन्नति करता होया अपने गुरु प्रति निरादर की भावना नहीं रखेगा। परिवार भी समाज लई एक पूर्ण अंग है। जेकर परिवार विच प्रेम प्यार है तो समाज भी उसी स्तर विच नजर आएगा। वेदां विच कहा गया है कि सहृदयम सामानस्यम विद्वेषम कृणोमिव अन्योन अभिहर्त वत्सम जात्मा विधन्यः, भाव लोग परिवार के मैंबरां तो ईरखा जां विरोध ना रखन। परिवार के मैंबर एक दूजे तो दूर ना होण बल्कि इकट्ठे जीवन बिताउण। जिवें नव जन्मे बछड़े पिछे गां भजदी है उसे तरह माता पिता भी अपने बच्चों नाल इसे भावना नाल रहन। समाज नूं उत्तम बनाउण लई उस विच रहिंदे मनुखां विच उत्तम गुणां दा होना भी बहुत जरूरी है। वेदां विच कहा गया है, समुद्र ईशे स्वरताम अग्निह पृथ्वा वशी चंद्रमा नक्षत्रणाम ईशे तत्मेकम वृषो भव, भाव समुद्र नदियां दा स्वामी है, अग्नि पृथ्वी दी स्वामी है, चंद्रमा सारे नक्षत्रां दा स्वामी है अते तुसी भी उसे तरह दे ही श्रेष्ठ बनो, भाव जो उत्तम बनता है उसकी ही उन्नति अते कीर्ति वधदी है। समुद्र दी तरणा करुणा प्रेम उदारता आदि गुणा की वृद्धि करो, अग्नि की तरह ज्ञान ते तेज प्राप्त करो, चंद्रमा की तरह सरलता शीतलता आदि गुणा की वृद्धि मनुख नूं ही करनी चाहिए है। समाज उदों ही उन्नति अते शिखर वल वधदा है जदों ओह हर पास्यों सुरक्षित होवे, किसी देश दुश्मन का डर उसनों ना होवे। अथर्ववेद विच अजही प्रार्थना सामने नजर आउंदी है जो मनुख समाज अते देश लई कल्याणकारी है। अभयम मित्राद भयम मित्राद अभयम न उक्तम भयम दिवाना सर्वा आशा मम मित्रम भवनंतो, असी मित्रां तो निडर रही है अते सानू दुश्मनां दा भी कोई डर ना होवे, ना सानू दिन विच कोई डर रहे अते रात नू भी बिना डर दे असी रह सकीए। चारे दिशावां साडियां मित्र होण, सानू किसे पास्यों किसे दा डर ना होवे। समाज कल्याण दी भावना समाज नू उत्तम दिशा वल प्रेरित करदी है। कोई भी समाज उदों तक तरक्की नहीं करता जदों तक लोकां दा आपसी सहयोग एक दूजे नाल ना होवे। वेद अमृतम विच लिखिया है, मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षंतम मित्रा सयायम चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षय मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, मैं सारे लई मंगल कामना करदा हाँ, सारे दे सुख विच ही अपना सुख समझदा हाँ। सदाचार अते संगति दी कल्पना करदे होए यजुर्वेद विच भी लिखिया गया है, ओम विश्वानी देव सवितुर दुरितानी परासु यद भद्रम तन आसुव, भाव हे विश्व दे देवताओ मेरे अंदरों सारियां बुराइयां नूं दूर करो अते मेरे लई जो चंगा है उही मैनूं प्रदान करना। समाज विच वैर विरोध कट्टरता अते लड़ाई झगड़े वधदे जा रहे हन, लोक बोलक बोल बोल के एक दूजे तो दूर हुंदे जा रहे हन अते बोली विच मधुरता खत्म हो रही है। परंतु अथर्ववेद समाज अते मनुख दे कल्याण लई प्रार्थना करदा होया लिखदा है, अश्विना सारघेन मां मधुनाम अंकतम शुभ्यते यथा भर्गस्वती वाचम दानी जनामनु, भाव हे परमात्मा मेरी बोली विच इन्नी मिठास रखना कि मैं दूजियां नाल गलबात करदियां उन्हां दे विचारां नूं सुन के उन्हां दे अनुकूल अते चंगी भाषा दा प्रयोग कर सकां। जिस तरह धागे विच मणियां नूं पिरो के मंगल माला दा निर्माण कीता जांदा है उसे तरह संसार दे सारे प्राणी एक माला विच रह के एक उच्च समाज दा रूप धारण करदे होए प्रेम भाईचारे दा प्रसार करन अते नफरत दुश्मनी तों दूर रहन। संतकी साहित नूं उत्तम समाज बनाउण लई पूर्ण रूप विच ज्ञान प्राप्त हुंदा है। जिवें कुछ छोटे छोटे संस्कृत दे वाक भी बहुत वड्डी वड्डी गल करदे नजर आउंदे हन। उदाहरण

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल के तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्याएं इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर आ रही है। इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्तचाप का स्तर मानक से अधिक होता है। ये एक स्थिति है जो धीरे धीरे विकसित होती है और आमतौर पर लोगों को पहले से ही पता नहीं चलता है। अगर यह समस्या नियंत्रित नहीं हो जाती है तो ये दिल, दिमाग, किडनी और अन्य शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है। उच्च रक्तचाप को अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव रक्तवाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ कार्य करता है। ये बीपी रक्तवाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी चला रहे होते। लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हृदय रोग और कभी कभी मृत्यु हो सकती है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अंतर्निहित चिकित्सा और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि, तनाव और गतिविधियों की कमी, क्रॉनिक किडनी रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, गर्भावस्था या कुशिंग सिंड्रोम को उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण माना जाते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये एक क्रॉनिक बीमारी है और 90% रोगियों में उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इसे दवा के साथ और जीवन शैली और खाने की आदतों में कुछ संशोधन के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर नियमित चिकित्सा ध्यान देना है और अपने चिकित्सक के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। किडनी रोग एक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें किडनी की क्षमता मामूला से कम हो जाती है और ये सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण ये है दोस्तों, खान पान की गलत आदतें, अधिक नमक, अल्कोहल और अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है जो बाद में किडनी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515

7039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं और किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप और किडनी समस्या आमतौर पर बढ़ती है अनियमित जीवन शैली, डिसऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, व्यायाम की कमी और अत्यधिक वजन, ये सभी उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज के कुछ लक्षण इस तरह हैं: बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त आना, थकान, सिर दर्द, नजरों में धुंधलापन, पैरों और एंकल्स में सूजन। तो इसके लिए क्या करें? कम नमक खाएं, कम तेल और सुपर फूड्स का सेवन करें। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, मखाने जैसे आहार उच्च रक्तचाप और किडनी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। योग, ध्यान या साधारण सीखी गई व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित चिकित्सकीय जांच और टेस्ट से आप अपने रक्तचाप और किडनी के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या हैं, जिनका समय पर पहचान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, सही खानपान आदतें बनाना और नियमित चिकित्सकीय जांच से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही सचेतता फैलाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए, ताकि लोग इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और सही समय पर कदम उठाएं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसका सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपचार उच्च रक्तचाप के लिए काम करेंगे, जैसे स्वस्थ BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, नियमित व्यायाम, अतिरिक्त सोडियम को कम करना, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना। अन्य उपाय जैसे संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, सांस लेने का व्यायाम करना और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना, प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना। मुख्य रूप से प्राकृतिक उपचार खाते में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह था हाइपरटेंशन और उसके असर अपने किडनी पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करता है और यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

समर्थ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर की नी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरियो, निस बासुरी एक समान, ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरियो, पन दास जो आस जगत्र गुरु की, पारस पेट परस करियो, रामदास गुरु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालिंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के ग्लोबल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य

0: स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
0: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
0: क्या हम सी फेरर इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
1: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
0: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशन को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें, तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
1: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
4: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और

0: राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं।

अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आर्यना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आर्यना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान, पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति को अगर किसी एक शब्द में समझना हो तो संभवतः वो शब्द होगा जीवन। हम किन परंपराओं को सजोते हैं, किन नदियों के किनारे अपनी स्मृतियां छोड़ते हैं, किन पर्वों में सामूहिक उल्लास के रंग भरते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या गाते हैं, किस भाषा और बोली में अपनी पीड़ा दर्ज करते हैं, इन सब में हमारी संस्कृति सांस लेती है। और इसीलिए भाषा भी केवल संवाद का माध्यम नहीं है। भाषा में हमारी स्मृतियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी जीवन दृष्टि है। जरा सोचिए, हमारी दादी नानी की कही कोई पुरानी बात, गांव की कोई लोक कथा, किसी त्योहार का गीत, इस रिश्ते को पुकारने का अपना अलग ढंग, क्या ये महज शब्द है? नहीं, इन शब्दों में एक पूरी जीवन पद्धति होती है। एक समाज, उसकी स्मृतियां, उसकी परंपराएं और उसकी संवेदनाएं। दरअसल भाषा और बोलियां संस्कृति की सबसे जीवंत आवाज है। हम जैसा जीते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हमारे देश की खूबसूरती ही इसकी विविधता है। यहाँ भाषा बदलती है तो उसके साथ लोक बदलता है, लय बदलती है, संबोधन बदल जाते हैं, लेकिन भावनाओं की धड़कन वही रहती है। हिंदी की अपनी खूबसूरती भी इसी में है कि उसने इस विविधता से संवाद किया। अलग अलग भारतीय भाषाओं, बोलियों और लोक परंपराओं से शब्द और भाव ग्रहण किए, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं से भी। इसीलिए हिंदी कोई बंद कमरा नहीं, बल्कि कई दिशाओं से आती हुई सांस्कृतिक हवाओं के लिए एक खुली खिड़की है। और जब कोई भी भाषा संस्कृति को अपने भीतर समेटती है तो वो सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं रहती, वो हमें अपने होने का अर्थ भी बताती है। भाषा से संस्कृति की ओर और संस्कृति से प्रकृति की ओर, अब एक ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता केवल पैरों से नहीं स्मृतियों और संवेदनाओं से भी तय होता है। नर्मदा, जिसे भारत की जीवनदायिनी नदियों में से एक माना जाता है, जिसके तटों पर सभ्यताएं, लोक विश्वास और अनगिनत कथाएं आकार लेती रही हैं। विश्व नदी दिवस के उपलक्ष में सुनिए प्रख्यात चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ के स्वरों में उनकी नर्मदा परिक्रमा के वृत्तांत का एक अंश, तीरे तीरे नर्मदा।
1: हम लोग नर्मदा पदयात्रा कर रहे थे और अमरकंटक जा रहे थे। छिनगांव का कुआं गांव के बाहर एक घाटी में था। मेरे साथी बड़े सवेरे वहां जाकर नहाए। मैं गया जरूर पर नहाया नहीं, ठंड के कारण हिम्मत ही न हुई। मन को समझाया, नहाऊंगा तो नर्मदा में, कुओं तालाबों पर नहीं। कह हंसा मोती चुगे, कह भूखे रह जाए। छिनगांव से बरछा, कच्ची धूल भरी सड़क से उतरने लगे तो नीचे दूर मैदान में से बहती हुई धूप नहाई।

0: नर्मदा दिखाई दी। अब प्रायः अमरकंटक तक नर्मदा मैदान में से ही बहती है। पंचमनाथ पुजारी जब 48 बरस का था तभी पत्नी का देहांत हो गया था, अभी 70 का है और पूरी तरह से स्वस्थ है। कहता है, मैं बाहर भी हूं और भीतर भी हूं। अगर हम लोग भी बीच बीच में भीतर चले जाया करें और देखते रहें कि कहीं हमारी आत्मा को फफूंद तो नहीं लग गई तो कितना अच्छा हो। दूसरे दिन भी लगातार पानी बरसता रहा, हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन किसानों को कई दिनों से इस वर्षा की प्रतीक्षा थी। उनकी फसल सूख रही थी, उसे नया जीवन मिला। वैसे किसानों को इससे कहीं अधिक पानी की जरूरत थी। बादलों को आकाश से नीचे उतारने की विद्या केवल वनों को आती है और हम अपने अधिकांश वन काट चुके हैं। अब बादलों को आकाश की अटारी से नीचे धरती पर भला कौन उतारे। रात लुकामपुर में रहे। रात्रि के अंतिम प्रहर में ओस गिरनी शुरू हो गई थी। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से ओस की बुंदनियां, सवेरे घना कोहरा। कोहरे के छटने का काफी इंतजार किया लेकिन छटा नहीं तो कोहरे और ओस की फुहार में ही चल दिए। चलते चलते आसपास के सौंदर्य को मन में उतारता जाता, सोचता क्या इस सौंदर्य की गूंज अपनी कृतियों में पैदा कर सकूंगा, लेकिन इसकी चिंता अभी क्यों करूं, अभी तो इसका भरपूर आनंद लूं, अपने हृदय में उतार लूं और पकने के लिए वहीं छोड़ दूं। समय आने पर वह स्वयं बाहर आएगा, इसमें समय लगता है। अगर मैं कलाकार हूं तो मुझ में धैर्य होना चाहिए। दोपहर को खाना नहीं बनाते, लेकिन रामघाट के प्रपातों को देखकर लगा कि आज खाना यही बने। देर तक मैं उन प्रपातों के पास मड़राता रहा। शाम तक दूधी संगम पहुंच गए, लेकिन एक ग्रामीण ने कहा कि आप दूधी पार करके हर्रा जाइए, वहां कहीं न कहीं रहने की व्यवस्था हो जाएगी। आधी रात को आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्र था, चंदन का घाट और पूनो का चांद। अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान मुझे कई पूर्णिमाएं देखने का अवसर मिला है और हर बार मैंने नई नई उपमाओं से चांद और चांदनी का वर्णन किया है। सवेरे आगे बढ़े, बसंतपुर और कंचनपुर होते हुए ठाड़ पातर पहुंचे। इस बार की यात्रा में एक सुखद परिवर्तन देखने मिला। अधिकांश गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खुल गई हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जहां भी शाला मिली हम वहां जरूर गए और शिक्षक से अनुमति लेकर मैं बच्चों को नर्मदा के बारे में बताता। अगर बच्चे जरा बड़े होते तो अपनी पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा में से उनके गांव से संबंधित अंश पढ़कर सुनाता। नर्मदा तट के कई गांवों में मैंने बच्चों के समक्ष रचना पाठ किया। उसी निष्ठा से, जिस निष्ठा से नवंबर 2001 में भोपाल के भारत भवन में साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के समक्ष किया था। ठाड़ पाथर की पाठशाला को देखते ही मेरी बांछें खिल गई। प्यारे बच्चों, हर बच्चे को सबसे अधिक प्यार अपनी माँ से होता है, माँ के बिना वह रह नहीं सकता। इससे हुआ यह कि जो भी चीज हमें बहुत प्यारी होती है उसे हम माँ कहने लगे। जैसे हमारा देश, हम उसे भारत माता कहते हैं। इसी प्रकार यह जो नर्मदा बह रही है ना, वह हमें इतनी प्यारी लगती है कि हम उसे भी माँ कहते हैं, नर्मदा मैया। बच्चों, तुम कितने भाग्यवान हो कि नर्मदा की गोद में पल बढ़ रहे हो। पता नहीं बड़े होकर तुम इसी गांव में रहोगे या और कहीं जाओगे। जहां भी जाओ अपनी इस नदी को कभी मत भूलना। तुम जहां भी जाओगे इस नदी का एक अंश तुम्हारे साथ जाएगा।
1: ये थे चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी जबलपुर। देश के मध्य में नदी की धारा से अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां संस्कृति केवल उत्सव नहीं समुदाय की सामूहिक स्मृति

0: नदी और प्रकृति के साथ उसके रिश्ते की अभिव्यक्ति है। मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसने वाला गारो समुदाय सूर्य देवता को समर्पित जिस उल्लासपूर्ण नृत्य उत्सव के साथ अपनी सामुदायिक जीवन ऊर्जा को व्यक्त करता है वो है वांगला। और इसी वांगला के लोकरंग को समेटे है हमारी अगली प्रस्तुति, ये लघु रूपक आशीर्वाद मिसी सालजोंग का।
1: हरे भरे पहाड़, बादलों से घिरा आसमान और इसके बीच गूंजती ढोल की सामूहिक थाप, ये है मेघालय का गारो समुदाय का वांगला। एक ऐसा लोक उत्सव जिसमें संगीत है, नृत्य है और प्रकृति के प्रति आभार की भावना भी।
2: भारत के पूर्वोत्तर की जनजातीय परंपराओं में गारो समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान है। गारो समुदाय मुख्य रूप से मेघालय में निवास करता है, हालांकि असम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी इनकी बसावटें हैं।
1: वांगला फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला पारंपरिक उत्सव है। ये मूलतः गारो समुदाय के सूर्य देवता मिसी सालजो के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि के उत्सव का अवसर है।
2: और इसकी सबसे खास पहचान है ढोल की सामूहिक थाप। शायद इसी वजह से वांगला को कहा जाता है 100 ढोलों का उत्सव।
1: इस जीवन परंपरा की खूबसूरत झलक इस साल दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट फेस्टिवल यानी नेस्ट फेस्ट 2026 में भी देखने को मिली।
2: लेकिन आखिर वांगला नृत्य की खासियत क्या है, इसकी प्रस्तुति में कौन सी लय और भाव छुपे हैं?
3: मेरा नाम अनालिशा है, मैं मेघालय से हूँ, गारो ट्राइब से। ये हमारा वांगला डांस जो है वो एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू करा था। जो ट्राइब है मेघालय की उसका एक गॉड है जो कि हम बोलते हैं मिसी सालजो, जो कि सन के गॉड हैं। तो हम उनको हमारी अच्छी हार्वेस्ट को प्रेज करने के लिए या फिर वर्शिप करने के लिए हम ये वांगला डांस परफॉर्म करते हैं। 100 ड्रम्स वांगला ये एक फेस्टिवल है, इस पे हम वांगला परफॉर्म करते हैं। हमारा जो ड्रम्स होता है हम खुद ड्रम्स बजा के हम डांस करते हैं। जो लड़के लोग होते हैं वो ड्रम्स, हमारे ड्रम जो होते हैं उसको दामा बोलते हैं, लंबे ड्रम होते हैं, वो लड़के लोग डांस के टाइम पे उसको कैरी करते हैं और वो बजाते हैं उस टाइम पे, तो वही हमारा इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक हो जाता है।
1: पारंपरिक दामा ढोल की थाप पर जब कलाकार एक साथ कदम मिलाते हैं तो जैसे पूरी प्रस्तुति में एक लय सी दौड़ जाती है।
2: ढोल की यही धुन वांगला को गति देती है, 100 ढोलों के उत्सव की पहचान भी देती है।
1: वांगला की खूबसूरती सिर्फ इसके लय और कदमों में नहीं, इसके रंगों में भी दिखाई देती है। पारंपरिक वेशभूषा के रंग बिरंगे परिधान और आभूषण इस नृत्य को एक अलग विजुअल पहचान देते हैं।
2: आइए सुनते हैं अनालिशा को।
3: जब हम ये डांस परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली हम लोग अपना ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं। ट्रेडिशनल अटायर जैसे कि हम लोग सर पे बांधने का कपड़ा पहनते हैं, रैप अराउंड स्कर्ट होता है। मैं अगर गारो में बोलना चाहूँ तो एक दोमे होता है, दोमे जो होता है वो हम सर पे लगाते हैं, वो मुर्गी के पंख होते हैं, और एक खोतप होता है वो हम सर पे बांधते हैं कपड़ा जैसा होता है। तो फिर हम इयररिंग्स भी पहनते हैं, उसको हम नाथापसी बोलते हैं, और नेकलेस भी पहनते हैं, लंबे लंबे नेकलेस, उसको हम रुकतुक बोलते हैं या फिर रुकमाचू। और हम जो बेल्ट पहनते हैं उसको हम सेंखी बोलते हैं, और जो हम हाथ में जो चूड़ियां पहनते हैं उसको हम चकसान बोलते हैं। हाँ, और जो हम नीचे जो रैप अराउंड स्कर्ट पहनते हैं उसको हम मंदा बोलते हैं।
2: इस पूरी प्रस्तुति का नेतृत्व करने वाला एक खास कलाकार भी होता है जिसे कहा जाता है मदग्रिक। आइए सुनते हैं रियोशन से।
4: तो जो मदग्रिक का जो ड्रेस है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा वॉरियर होता है जो अपने कम्युनिटी को लीड करेगा। तो उसका जो कपड़ा होता है उसका पंडरा होता है, जो वो गमछा की तरह उसको पहना जाता है उसको पंडरा कहते हैं, और इसको रुकमाचू कहते हैं, जो हम गले में पहनते हैं उसको रुकमाचू कहते हैं। और उसके बाद हम दोमे भी पहनते हैं, दोमे

0: बेसिकली जो बर्ड है वाइल्ड बर्ड्स से उनको बनाया जाता है।
1: तो ये है गारो समुदाय का वांगला, जहां ढोल की हर थाप में उत्सव की खुशी है, हर कदम में सामूहिकता की लय है और हर रंग में अपनी संस्कृति पर गर्व।
2: समय बदला, जीवन शैली बदली, लेकिन वांगला की थाप आज भी गूंज रही है अपनी परंपरा, अपनी पहचान और अपनी जड़ों को साथ लेकर। संस्कृति भारती के लिए मैं हूँ प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
3: आशीर्वाद मिसी सालजोंग का। गारो समुदाय के वांगला नृत्य उत्सव पर केंद्रित लघु रूपक अभी आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। लोक से शास्त्र, परंपरा से पर्व और अब गणपति बप्पा की भक्ति और उत्सव धर्मता के रंग। भारत के अलग अलग हिस्सों में पर्वों की अपनी अपनी छवियां हैं, अपनी ध्वनियां हैं, अपनी परंपराएं हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव तो जैसे सार्वजनिक जीवन और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा ही है। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति गणपति बप्पा मोरया।

0: पुणे का गणेशोत्सव आज जिस तरह से पूरे जोश और उत्साह से मनाया जाता है, उसकी शुरुआत के पीछे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बड़ा योगदान है। सन 1893 में लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। उस समय गणपति की पूजा ज्यादातर घरों में ही होती थी। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव के बहाने लोगों को एक साथ लाया। गणेशोत्सव को उन्होंने अनंत चतुर्दशी तक मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पूजा के साथ भजन, कीर्तन, भाषण और तरह तरह के कार्यक्रम भी होने लगे। उस समय देश अंग्रेजों के शासन में था, इसलिए इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों में जागरूकता और देश के लिए कुछ करने की भावना भी पैदा होने लगी। शुरुआत में सन 1893 में पुणे में 3 और मुंबई में 2 जगह सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया गया था। धीरे धीरे यह उत्सव पुणे से निकलकर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों तक और अब तो सारे देश में ही नहीं विदेश में भी पहुंच गया है। पुणे के गणेशोत्सव की एक खास पहचान है यहाँ के प्रतिष्ठा प्राप्त 5 गणेश, जिसे मराठी में मानाचे 5 गणपति कहते हैं। इनमें श्री कस्बा गणपति को पुणे का ग्राम दैवत माना जाता है।
1: नमस्ते, मैं नीलेश वकील कार्याध्यक्ष, मैं बात कर रहा हूँ पुणे के प्रथम नामांकित मंडल से, श्री कस्बा गणपति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल से। 1893 में यानी 1893 में ये गणेशोत्सव मंडल की हमारे स्थापना हुई और तब से ये उत्सव चलते आ रहा है। पहला मान विसर्जन का यानी पहला नंबर हमको दिया जाता है। गणेशोत्सव क्या है तो कलावंत, विचारवंत, बुद्धिवंत इन लोगों का उत्सव यानी गणेशोत्सव, यानी सब लोग आके ये उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। गणेशोत्सव की और एक खासियत है कि सामाजिक काम यानी सोशल वर्क। इसी तरह से हम लास्ट 25 साल से ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं।

0: इसके बाद तांबड़ी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुलसीबाग और केसरीवाड़ा के गणपति आते हैं।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित तिलक, मैं अध्यक्ष हूँ केसरी गणेश उत्सव का। अलग अलग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं केसरीवाड़ा में, कोई लेक्चर्स हो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स रखे जाते हैं, कॉम्पिटिशन रखी जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है। ऐसे पूरे 10 दिन कार्यक्रम केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से किया जाता है। अगर कोई प्रेजेंट इशू हो तो उसके ऊपर भी लेक्चर्स ये केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से हमेशा कंडक्ट किया जाता है।
0: गणपति की स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी के विसर्जन तक पूरा शहर जैसे उत्सव में डूबा रहता है। कहीं ढोल ताशों की गूंज सुनाई देती है तो कहीं सुंदर सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई देते हैं।

0: श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति के बारे में हेमंत रास ने बताते हैं।
1: जय गणेश। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणेशोत्सव 135 साल यहाँ पुणे में विराजमान हो रहे हैं। अभी श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति का परमानेंट मंदिर हो गया है। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ रहती है। उत्सव में 10 दिन में 2 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस साल हमने वृंदावन का प्रेम मंदिर यहाँ मंडप में बनाया है, जो दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दान पेटी में जो भाविक अपना योगदान देते हैं, उससे हम मानव सेवा का महामंदिर बनाते हैं।
0: भाऊ रंगारी गणेशोत्सव के अध्यक्ष संजीव जावड़े,
2: ये जो उत्सव जो चालू हुआ वो 1892 में भाऊ रंगारी इन्होंने चालू किया उनके साथीदारों के साथ, और उन्होंने एक मूर्ति बनाई जो राक्षस को वध करती है, और ये मूर्ति इको फ्रेंडली है। और 1892 से आज तक हमारे ट्रस्ट ने किसी के पास चंदा लिया नहीं है, हम गुलाल नहीं यूज करते। और तीसरी बात यानी हमारे जो उसमें म्यूजिक या गीत जो रहते वो भक्ति गीत रहते, और वो भी मॉडरेट लेवल नॉइस पे।
0: पुणे का गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि लोगों को साथ लेने वाला, हमारी संस्कृति से जोड़ने वाला एक खास उत्सव बन गया है।
3: गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति आपने सुनी आकाशवाणी पुणे के सौजन्य से। उत्सव हमें जोड़ते हैं और शिक्षा हमें सशक्त बनाती है। साक्षरता केवल अक्षरों को पहचान लेने का नाम नहीं, ये अपने अधिकारों को समझने, अपने निर्णय स्वयं लेने और दुनिया को नए नजरिए से देखने की क्षमता भी है। शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में अब एक ऐसी कहानी जिसने साक्षरता की उपलब्धि को एक भौगोलिक पहचान से जोड़ दिया, मिजोरम की उस यात्रा की कहानी जिसने उसे साक्षरता के शिखर तक पहुंचाया। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साक्षरता का मिजो शिखर।
4: साक्षरता का अर्थ केवल वर्णमाला पहचानना या हस्ताक्षर करना नहीं है। वास्तविक साक्षरता वो है जो नागरिक को अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और समाज के प्रति उसके योगदान का एहसास भी कराए। हाँ, शुरुआत जरूर अक्षरों की पहचान से होती है।
5: सितंबर का ये समय देश भर में पठन पाठन और गुरु परंपरा के सामाजिक महत्व पर मंथन का अवसर देता है। ये समय हमें ये देखने का अवसर भी देता है कि नीतियाँ कागजों से उतरकर धरातल पर कितना प्रभाव छोड़ रही हैं।
4: इसी उजाले की मिसाल बनकर उभरा है भारत के पूर्वोत्तर का सुंदर राज्य मिजोरम। भारत सरकार के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम ने 98.2% की कार्यात्मक साक्षरता हासिल करके देश में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है।
5: पर जानते हैं, दुर्गम पहाड़ियों और बीहड़ रास्तों के बीच बसी आबादी में इतना बड़ा बदलाव केवल कागजी दावों से नहीं होता। जब जमीन पर जाकर एक एक

0: घर का सर्वे किया गया तो देखा गया कि आखिरी पड़ाव पर लगभग 3000 ऐसे लोग बचे थे जो अक्षरों की दुनिया से दूर थे।
1: और यहाँ मिजोरम की सांस्कृतिक चेतना का एक सुंदर रूप देखने को मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं तलांगना। जैसे ही सर्वे के आंकड़े सामने आए तो बिना किसी आर्थिक लाभ की परवाह किए लोकल वॉलंटियर्स और युवा खुद आगे आ गए।
0: इन युवाओं ने गांव-गांव जाकर अपने से बड़ों को पढ़ाना शुरू किया और एक अनोखा कम्युनिटी बॉन्ड बना, यानी तलांगना। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आधुनिक कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल को समझने के लिए आइए सुनते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल परिसर के प्राध्यापक डॉक्टर वनलाल रोहता को।
2: मिजोरम में जीवन को करीब से देखने और समझने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि मिजो समुदाय का पढ़ना पुस्तकों और शिक्षा के साथ ऐतिहासिक रूप से एक गहरा और विशिष्ट संबंध रहा है। जब ईसाई मिशनरी मिजोरम आए तो उन्होंने रोमन लिपि का प्रयोग करते हुए मिजो भाषा के लिखित रूप को विकसित और प्रचलित किया। मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ने की संस्कृति केवल उच्च शिक्षित लोगों तक सीमित नहीं थी, परिवारों में मनोरंजन और रुचि के लिए पढ़ने की भी एक मजबूत परंपरा रही है। सोशल मीडिया के दौर से पहले माता पिता द्वारा बच्चे को सोने से पहले कहानियां सुनना या सुनाना काफी आम बात थी। मेरा मानना है कि मिजोरम की उच्च साक्षरता दर की जड़ें समुदाय की मजबूत सहभागिता की संस्कृति में निहित है। मिजो दर्शन में निहित त्रावमेना अर्थात बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और उनकी सहायता करना, उल्लास अर्थात समाज के सभी वर्गों के लिए आजीवन सीखने की अवधारणा, या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भी इसी सामुदायिक भावनाओं को महत्व दिया गया है। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए 95% साक्षरता को मानक माना गया है। उल्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मुझे इसमें स्वयं सेवी शिक्षकों की भूमिका लगती है। मिजोरम में इन स्वयं सेवी शिक्षकों में विद्यार्थी, शिक्षक, संसाधन व्यक्ति और क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर के समन्वयक शामिल रहे हैं। उन्होंने विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, वायम पुस्तकालय और आवश्यक पड़ने पर शिक्षार्थियों के घरों तक जाकर भी सीखने सिखाने की गतिविधियां संचालित की।
3: कम्युनिटी हॉल्स, वायम लाइब्रेरीज एंड वेयर नेसेसरी इवन इन लर्नर्स होम्स एज़ वेल टू देयर ओन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट।
0: मिजोरम के पहाड़ों पर जब सुबह सुबह धुंध छटती है तो किसी घर के बरामदे में बैठा बुजुर्ग या स्कूल की ओर बढ़ती कोई छोटी बच्ची, दोनों के हाथों में एक चीज समान मिलती है, एक खुली हुई किताब। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं हूँ प्रांजल।
4: अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति साक्षरता का मिजो शिखर, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। विश्व के या देश के अलग अलग हिस्सों को हम समझना चाहें, उन्हें जानना चाहें, तो करनी पड़ती है यात्राएं। और इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। और पर्यटन की यही मानवीय भूमिका हमें एक दूसरे महत्वपूर्ण दिवस की ओर ले जाती है, विश्व शांति दिवस। हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में इस दिवस की घोषणा की थी और 2001 में इसे अहिंसा और युद्ध विराम के दिवस के रूप में निर्धारित किया। 2026 में विश्व शांति दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीडे, यानी शांति में निवेश हर व्यक्ति के लिए, हर जगह, हर दिन। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने विचार, कर्म, कला और जीवन से भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री नारायण गुरु, स्वाधीनता और राष्ट्र चेतना के पुरोधा दादा भाई नौरोजी और अमर क्रांतिकारी शहीद

0: भगत सिंह, शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर एनी बेसेंट, महान दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और संगीत की दुनिया की दो महान स्वर साधिकाएं एम.एस. सुब्बलक्ष्मी और लता मंगेशकर, जिनके सुरों ने भारतीय संगीत को देश और दुनिया तक का विस्तार दिया। इन सभी महान विभूतियों के कृतित्व और व्यक्तित्व को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक आनंद वैद्य का शास्त्रीय गायन। अजमेर राजस्थान के निवासी आनंद वैद्य जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अजमेर की श्रीमती श्यामल नवरे जी और सांगली के पंडित ए.आर. पटवर्धन जी से प्राप्त की। तत्पश्चात किराना घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित अजय पोहनकर जी के मार्ग

आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख्याल गायकी की शिक्षा ग्रहण की। पिछले 30 से अधिक वर्षों से देश के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे आनंद वैद्य सुरमणि और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के युवा शास्त्रीय गायक पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। आनंद वैद्य जी अपने कार्यक्रम की शुरुआत राग गोरख कल्याण से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल के बोल हैं धन धन भाग जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं जा जा रे जा पथिकवा जो तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अकबर हुसैन और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं राजेंद्र बनर्जी।

अभी आपने सुना राग गोरख कल्याण। आनंद वैद्य अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग जोग। विलंबित ख्याल के बोल हैं पिहरवा को बिरमायो, जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं साजन मोरे घर आए, जो तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आपने सुना आनंद वैद्य का गाया राग जोग। इसके साथ ही आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को

0: अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की

0: से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन में बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Amrit Bhushan. The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi today. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. It highlighted the need to tackle hunger and poverty and strengthen the global response to climate change. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व

लो जी प्रोग्राम की शुरुआत कर ली साडे कोल लकी कॉलर दोस्त पहुंच गए ने जो प्रोग्राम की शुरुआत कर ली साडे कोल पहुंचे ने आओ गल बात करते हैं। हेलो सत श्री अकाल जी कौन बोल रहे ने शरण जी बहुत बहुत स्वागत है थोड़े अपने प्रोग्राम सौगात दे विच हो सुनाओ घर परिवार की हाल चाल है थोड़ा चलो साड़ी दुआवां साड़ा प्यार थोड़े नाल हमेशा है और यही दुआ करते हैं कि तुसी हमेशा खुश रहो आकाशवाणी जलंधर ना जिहड़ा थोड़ा साथ है वो इदा ही ता उम्र चलता रहे। चलो थोड़ा प्यार सदके प्रोग्राम च असी जुड़दे हां और खास करके जो थोड़े अर्गे दोस्त प्रोग्राम दी शुरुआत कर दिंदे ने फिर तां इहनूं शब्दां च असी बयान नहीं कर सकते। अज गीत किहड़ा सुनना चाहुंदे हो? ठीक है जी कोई भी गीत हुण तुसी पसंद कीता है जिम्मा तुसी सानूं दे दित्ता है मैं तुहाडे तक भेज रहा हां। मिलते हैं इस अगले प्रोग्राम च और खास करके जदों हर शनिवार कॉल थोड़ी आती है तो सानू पता लग जाता है कि हर प्रोग्राम च शरण उन्होंने हसबैंड प्रोग्राम सुन रहे हैं और हर शनिवार तो तुम जो प्रोग्राम चलाने और अच्छ तो खास वैसे ही लकी कॉलर दोस्त बन गए हो। सो इस प्रोग्राम च हर प्रोग्राम च कॉल करने बहुत बहुत शुक्रिया। सुन वाले सारे श्रोता साढ़े वालों थानू बहुत बहुत मुबारक फोन करने बहुत बहुत शुक्रिया।

0: के दो सड़क पहुंच के नहीं आओ गल बात कर दे। हेलो
1: हेलो सर जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोले ने?
1: सर जी मैं जनक राज जी गुरदासपुर तो।
0: जनक राज जी बहुत बहुत स्वागत है थोड़े अपने प्रोग्राम सौगात दे विच।
1: बहुत बहुत थैंक यू मेरा साडी कॉल करन दा अटेंड करन वास्ते।
0: नहीं थोड़ा शुक्रिया, थोड़े करके प्रोग्राम सजदा है। तुसी भी नी रात नु प्रोग्राम च जुड़दे हो, बहुत अच्छा लगदा है। अज की खास सुनना चाहंदे हो? ठीक है जी, तुहाडी पसंद तुहाडे तक पहुंच रही है। फोन करने बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत थैंक यू सर।

0: हर चीज लाके यही कह रहे हैं कि मौसम जड़ा है बड़ा थोड़ा जा गर्मी चल रही है। मी जड़ा आज भी तो फिर तो क्या ही बात है। तो आज की खास सौगात साढ़े लेके आए हूँ।
1: गर्म जी
0: ठीक है जी, थोड़ी पसंद तक पहुंच रही है, फोन करने बहुत बहुत शुक्रिया।

0: ਲਓ ਜੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਸਤ ਅਗਲੇ ਆਵਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ 0182-4342-71 ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲੋ
1: ਹੈਲੋ
0: ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੌਗਾਤ ਮੇ ਔਰ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਆਪਕਾ
1: ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਹੈ ਸਰ ਜੀ
0: चलिए बहुत बढ़िया ही होना चाहिए और आज क्या खास सौगात में क्या सौगात लेके आए हैं
1: सर आज मौसम बहुत लगी थी
0: जी
1: ठंडा मौसम हो गया जी हमारे यहाँ
0: तो फिर थोड़ी सी नहीं ज्यादा ढेर सारी बारिश जो है जलंधर के आंगन में भी भेज दीजिए
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो आज कौन सा गीत सुनेंगे
1: गीत सुना दो आप
0: ठीक है जी आपकी पसंद आप तक पहुंच रही है फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: एक लाइन सुना दो सर
0: जी जी जी
1: शिमला

0: हमारे
1: तो
0: यहाँ
1: फिर थोड़ी सी नहीं, ज्यादा ढेर सारी बारिश जो है जलंधर के आंगन में भी भेज दीजिए।
0: पे ना।
1: तो आज कौन सा गीत सुनेंगे?
0: गीत सुना दो आप, मैं बुझा के बैठूँ।
1: ठीक है जी, आपकी पसंद आप तक पहुंच रही है, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: एक लाइन सुना दो सर जी।
1: जी,
0: शिमले दे आई ना काली काली बसी, शिमले दे आई ना।

0: हाँ जी
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही कॉल करते रहें सौगात प्रोग्राम में फोन करने के लिए, बहुत बहुत
0: हाँ
1: शुक्रिया।
0: जी, आपके सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे होते सर जी, बहुत, और आप कॉल उठा देते, बहुत बहुत धन्यवाद
1: चलिए,
0: जी आपका।
1: शुक्रिया शुक्रिया।

0: हेलो।
1: हेलो पार्थ साहब, नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: डेरा
0: कौन बोल रहे ने?
1: कलोनी फाइल के तो परमा सागर बोल रहे हैं साहब जी।
0: शर्मा सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है थोड़े अपने प्रोग्राम सौगात दे विच।
1: धन्यवाद साहब जी, धन्यवाद।
0: होर सुनाओ, घर परिवार सब ऑल गुड?
1: हाँ जी,
0: चलो वधिया ही चाहिए। ते आज की खास
1: सब्जियां गलत सारा
0: केड़ा खास गीत साडे लई लेके आए हो?
1: सब्जी बिंद रखे सुना दुपट्टा तेरा सत रंग का।
0: क्या बात है, क्या गाने की फरमाइश की थी है, तुहाडे तक पहुंच रहा फोन करनी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद सर।

0: निरंजन
1: के कहता
0: अदराज तक खोल
1: किड़े अदराज
0: ए वाला
1: ओ रिवॉल्वर
0: देख लो
1: हैं पुराने मॉडल का रिवॉल्वर कितों है
0: ये पिताजी दा
1: पर आया है
0: देख लो पिताजी दा है चलो चलिए ना जल्दी करो
1: तू रिवॉल्वर बारे प्रमोद नू नहीं दसना चाहती
0: नहीं
1: मैं दस दिया
0: पता नहीं मैं तो अपनी मन मर्जी कर दी हाँ तुसी रिवॉल्वर मैनू फड़ाओ मैं हमेशा ही मन मर्जी कर दी हाँ ते ओवी गजब दी होशियारी नाल आज तो कौन होवेगा
1: प्रमोद
0: प्रमोद प्रमोद कोल तो चाबी है ही घंटी क्यों बजा रहा तुसी
2: हाय रब्बा
0: तुसी ते कहंदे सो कि
2: कांता डार्लिंग मैं बहुत काली चाह सवेर दा झगड़ा
0: सवेर दा

0: लगता कोई आया। कौन?
1: मैं सुंदर।
2: जाहिर है कि तुहाडे च प्यार है ते तुसी दोवें शादी करोगे।
3: सुंदर, पाठक का कहना है कि मेरा शादी करना तेनू पसंद नहीं होगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं होगा। प्रीतम लाल नहीं आया?
0: उनु प्रीतम लाल, प्रीतम लाल क्यों कहते हो?
2: होर की आखा है
3: प्रीतम
0: कामनी, तेरा प्रीतम कौन है?
3: मेरा प्रीतम है जगन्नाथ महाशंकर पाठक, शहर दा मशहूर नट।
2: प्रीतम सोनी आ रहा।
0: प्रीतम सोनी?
2: प्रीतम सोनी की होया?
0: स्वाति किथे है?
2: स्वाति सोनी किथे है?
4: आंदी होवेगी, वो सीधी इत्थे ही आने वाली है।
2: स्वाति जरूर आवेगी ना।
0: सुंदर
2: क्यों,
0: रिहर्सल च अनुशासन रखना जरूरी है।
2: भाई मैं स्वाति नु शादी लई मता नहीं कोई पेश करन लगा।
0: ओहो,
5: मेरा नाम प्रीतम लाल कंचन लाल सोनी, उम्र 42 साल, कम अदाकारी। कामनी नु मैं 7-8 साल तो जानदा। कामनी बड़ी चंगी कुड़ी है, उसनु पिस्तौल चलाउणा आउंदा है। साडे रहस्य नाटक च पिस्तौल उन्हें नहीं सी चलाउणा, पर किसी कारण उन्हें चला दिता। मैंने कुछ पता नहीं कि मरण वाला कौन सी। मेरा ख्याल है कि कामनी पाठक के प्यार च डुबी हुई सी। अते
6: तुसी ये किवें मान लिया?
5: कामनी ने मैनू कहा सी कि पाठक उहदे नाल शादी नहीं करेगा तो वह आत्महत्या कर लवेगी।
6: तुहाडे अलावा होर कौन कौन सी नाटक च?
5: मेरी पत्नी स्वाति अते नाटककार मिस्टर केशव ठाकुर भी सन। मैं नंद लाल की भूमिका च सी, स्वाति नंद लाल की पत्नी ज्योत्सना की भूमिका च, ते ठाकर मेरी पत्नी दे प्रेमी दी भूमिका च सी। नाटक लिखिया भी केशव ठाकर ने सी।
6: पिस्तौल चलाउण वाली गल नाटक च लिखी हुई सी?
5: जी हाँ।
6: उहदे उहदे च असली गोली किवें आई, इह दस सकदे हो?
5: जी नहीं, मैं कुछ नहीं जाणदा। कामनी पोली होण करके कई बार उत्तेजित हो जांदी, पर किसी नूं उहदे नाल वैर होवे जां उसनूं किसी नाल, इह नहीं मन्निया जा सकदा।
7: स्वाति सोनी, पहला ना स्वाति मेहता, पति का नाम प्रीतम सोनी, उम्र 37 साल, कम हाउसवाइफ, ते कदे कदे प्रीतम वगैरह दे नाल नाटक च काम करन दा। कामनी मेरी पक्की सहेली है, लगता किसी ने उसनों फसाया है। मैं तो मान ही नहीं सकती कि उसने कुछ अजिहा कीता होवेगा, इस विच जरूर कोई धोखा है। मैं इस तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकती।
6: रोण दी लोड़ नहीं। सवालों का जवाब केवल हाँ जा ना च दियो। तुसी उस नाटक च काम कीता सी?
7: जी हाँ।
6: तुहानू पता सी वो लोग शादी करन वाले ने?
7: जी हाँ, ये सच है कि वो दोनों आपस च प्यार करदे सी ते हुण भी प्यार करदे ने, पर मैनू लगता है कि ते ये भी सच है कि वो शादी भी करन वाले सी।
6: कामनी नू किसे होर नाल भी प्यार सी? सही सोच के जवाब दियो। तुसी दस सकदे हो कि पाठक ते कामनी दे शादी करन नाल किसनों इतराज सी? कामनी दा पाठक दे इलावा कोई होर प्रेमी सी कि नहीं?
7: मैनू माफ कर दियो, माफ कर दियो मैनू, मैं कुछ नहीं जानदी।
6: चेते रखो तुसी कसम खादी है।
7: हाँ, मैं जानदी है कि मैं कसम चकी है, पर तुसी मैनू माफ कर दियो।
6: तुसी कुछ लुका रहे हो।
7: तुसी की कहलाना चाहते हो मेरे तो, की पूछना चाहते हो मेरे तो, तुसी की कबूल करवाना चाहते हो?
8: मैं भी एक औरत हाँ, किसी औरत नूं मैं चंगी तरह समझ सकती हाँ। एक औरत के जीवन च अजिहा बहुत कुछ हुंदा है जिसका वह जवाब हाँ या ना विच नहीं दे सकती।
6: हुण केवल इको सवाल, मृतक खोसला बारे कुछ जानदे हो? जवाब हाँ या ना च दियो।
8: नहीं नहीं नहीं, मैं शेखर खोसला बारे कुछ नहीं जानती।
6: हुण तुसी जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: क्यों भैया, किथे है केशव ठाकुर?
0: देखो इस तरह है कि केशव ठाकुर हजे तक नहीं आया, जो आ जाए तो असीं रिहर्सल शुरू करिए।
2: और की
0: ते वैसे ना मैं एक गल दसनी चाहुंदा सी। देख प्रीतम भाई, सुंदर स्वाति, इस नाटक दे पहले 10 प्रदर्शनों तो मगरों मैं ते कामनी विवाह बंधन विच बन जावां। हाँ, सुनो सुनो, एक गल होर, साडे नाटक विच हाले तक 6वें पात्र लई कोई

0: इतलों का रहसा। मैं स्वाति, पाठक, सुंदर, केशव सारे, हाँ कामनी ने जानबूझ के सोच समझ के खून किया। शेखर खोसला उसनों ब्लैकमेल करना चाहता सी।
1: मेरी कमाई इकले मेरे लिए काफी नहीं सी। साडा घर, साडा ठाठ बाठ, सब कुछ कामनी दी कमाई करके सी। असी कामनी दे आसरे ते ही निर्भर सा। कामनी सुंदर सी, हरमन प्यारी सी, पैसे कमाउंदी सी, पर इस गल दा मैनू अफसोस नहीं होया। अपनी भैन नू शरीर तो नहीं तां भावना नाल बदकारी लई मजबूर करके मैं अपने सारे शौक पूरे करता रहा। मतलब कि होर लोकां नाल मैं भी शोषण करता रहा होता। मैं अपने पैरां ते खलोण दी ताकत नहीं सी रखता। कामनी भैने, मेरी चंगी भैन, हुण पैसे दे दे, फिर कदी नहीं मंगांगा। दे दे पैसे, नहीं तो चमड़ी उधेड़ देंगा तेरी ते तेरे उस हवाई राजकुमार शेखर खोसला दी।
2: नहीं देंगी।
1: ले ना दे पैसे।
2: छोड़ मैनू, नहीं देंगी।
1: दे पैसे।
2: नहीं देंगी।
1: फिर सच दस, ये शेखर खोसला है कौन? दस दे, दस दे, दस दे, नहीं तो मार के हथौड़ा तेरा सिर पाड़ दा मैं।
3: मिस्टर देसाई, देसाई साहब।
1: कौन है, कौन है?
3: मैं जी अपने मिस्टर देसाई, मैं केशव।
1: की गल?
3: नमस्ते जी, और तुसी मैनू बुलाया सी।
1: ओ हाँ, आओ।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार, किवें किवें हो?
3: मजे चा जी, मजे चा। कामनी जी, सुंदर भाई ने कहा सी के एक नाटक चाहिदा है, सोचिया मैं दे ही आवा।
1: छेती आ गए हो?
3: पहले पैदल आ रहा सी, फिर सोचा बस च ही चलदा है।
1: ठीक है, असी पढ़ लवांगे फिर दस देंगे।
3: मैं तो नाटक सुनाना चाहता सी अपने मुंह।
4: हाँ हाँ, आओ बैठो बैठो बैठो।
3: नाटक का नाम हैगा रात रानी। संखेप च देखो नाटक में तो हाँ, तुसी संखेप च ही नाटक बारे दसो। इस नाटक का नायक एक लेखक है। देखो खुद मामूली आदमी हैगा, उदे कुछ दोस्त हैगे ने जेड़े अक्सर रुपए पैसे नाल उदी मदद करदे ने।
4: ठीक,
3: पर एक खास दोस्त ओदे नाल रहंदा ते ओ जेड़ा हैगा ना ओ बहुत चतुर चलाक हैगा।
4: ओदा नाम की है?
3: हाँ, ओदा नाम दसो। देखो दोस्त दा नाम हैगा शिरीष तरफदार।
4: शिरीष तरफदार?
3: हाँ।
4: वाह, क्या खूबसूरत नाम है।
3: तुसी फुलां दे नाम बहुत पसंद करदे हैगे हो ना कामनी जी, क्यों?
4: तुसी भी तो पसंद करदे हो ना।
3: मैं तां चरित्रां दे नाम फुलां नाल ही रखण दा जतन करदा जी, मैनूं चंगा लगदा हैगा।
4: नाटक दी गल करो।
3: हाँ, वो लेखक।
4: लेखक दा नाम की है?
3: पराग।
4: किन्ना वधिया नाम, किन्ना खूबसूरत नाम है। अगे
3: लेखक नु फुलां दे नाम बहुत पसंद हैगे ने।
4: ते विच कोई स्त्री चरित्र नहीं है?
3: आ, दो हैगे ने, दो हैगे ने। एक देखो पराग दी वोटी ते जूही ओदा नाम
4: हैगा,
3: ते दूजी अपने शरीश दी वोटी केतकी।
4: अगे
3: हां होर पात्र भी हैगे ने अपने कामनी जी। अरविंद हैगा, चंपक लाल हैगा, ओदा पुत्र पल्लव हैगा
4: जी।
3: पराग ते शरीश दे घेरे अलग अलग हैगे ने
4: जी।
3: ते नाटक इन्ना ही देखो पात्रां नूं लैके अगे वधदा हैगा। अखीर दे विच पता की हुंदा? अखीर च पराग शरीश दे खंभ ला के फिर पराग बनन दा जतन करदा, पर सफलता नहीं मिलदी हैगी ओनूं, क्योंकि अपने ही फैलाए हुए जाल च
4: फस जांदा है। ठीक है, विषय वस्तु तो बड़ा सुंदर है जी।
3: पर देखो तुसी नाटक पढ़ के जरूर देखना हैगा
4: जी। जी,
1: ओ पढ़ लिया जनाब, पढ़ लिया, सामने बिठा के तुहाडे कोल दोबारा लिखवाना पएगा ये नाटक मैनू। इस तरह उन्हूं अपने कोल बिठा के असी नाटक लिखवाया। फिर मगरों कामनी ने मन्या कि शेखर खोसला ने ओदे

0: कामनी, जहां तक वो आदमी पागल है या बेवकूफ, या तू मेरे को टोंग रच रही है।
1: क्यों?
0: एक गल तू किस किस नु दसी है?
1: किसे नु भी नहीं।
0: तू फिर झूठ बोल रही है।
1: नहीं दसी, सच कह रही हूं मैं, कहती रही हूं तुम्हें।
0: शेखर खोसला बारे तू प्रीतम भाई नु कुछ नहीं दसिया?
1: हां उन्होंने क्या सी,
0: फिर
1: पर यह गल नहीं दसी, केवल इन्हें ही दसिया सी कि वह मैनू ब्लैकमेल करना चाहता है।
0: तू जो कुछ कह रही है कि वह सच है?
1: हां पाठक, पर तुसी इन्हें शक्की क्यों हो रहे हो?
0: मैनू तेरी गल सच्ची नहीं लगती कामनी।
1: तुसी डर गए हो, कायर हो, हुणे एक मिनट मगरू ओदी गल मनन लई तैयार हो जाओगे, क्योंकि तुहानू अगवा किते जाण दा डर है। यह भी डर है कि नाटक जगत च नाम नहीं कमा सकोगे। तुहाडे ते शेखर खोसला च कोई फर्क नहीं है पाठक, दोहां च मैनू कोई नहीं चाहुंदा। मेरे नाल इसलिए शादी करनी चाहुंदे हो कि मुफ्त च हीरोइन हथ आ जावे ते नाटक जगत च ना हो जावे, ते शेखर खोसला इसलिए शादी करना चाहुंदा है कि अपने दोस्तां नू दिखा सके कि एक मशहूर अभिनेत्री उहदे इशारियां ते नचदी है। तुसी दर्शकां दे सामने अपनी महानता सिद्ध करनी है, ते शिखर ने दोस्तां दे सामने। तुसी दोवें मैनू इस्तेमाल करना चाहुंदे हो, डरपोक हो तुसी, स्वार्थी, नीच, कमाल।
0: एक शब्द भी होर किया ते मैं तेरा गल कुट देंगा। मूर्खे, तू किनू मूर्ख बना रही है? इनिया वाहियात गलना नाल तू की समझदी है कि तू मैनू डरा लवेगी? मैं इस गल नाल डर जावांगा? सच सच दस, इस सच की है? बोल बोल की सच है?
1: वाह मेरे प्रेमी, मैनू बचाउन दी थां खुद ही मेरे ते हाथ चुक दे हो, शक कर दे हो, फिर मेरे नाल शादी करनी चाहुंदे हो?
0: हाँ कामनी, शादी तां मैं हुण वी तेरे नाल करनी चाहुंदा, पर तेरियां मन घड़त गल्लां ते यकीन करना जरूरी नहीं समझदा।
1: मतलब कि मेरियां गल्लां मन घड़त ने?
0: हाँ, मन घड़त है। शेखर खोसला ना दा कोई बंदा है ही नहीं कामनी। तू उस लेखक पिछे पागल है, क्योंकि वो तैनू देख के नशा जांदा है। तेरियां गल्लां सुनन वास्ते वो सिर दे पार खलो जांदा है। तैनू अजिहा कुत्ता चाहिदा है जेड़ा तेरे पिछे पूंछ ही लांदा फिरे।
1: ठीक है फिर, एक गल मैं फिर कदी नहीं छेड़ांगी। तुसी जो चाहो मन लेना, पर फिर मगरू मैनू दोष ना देना।
0: आई एम सॉरी कामनी, मैनू माफ कर दे।
1: नाटकां च ये डायलॉग इन्नी बार सुन चुकी हाँ कि हुण सारे नकली लगते ने, पर मैं ये किवें यकीन कर लवां पाठक कि असल कहानी कहानी नहीं है? शेखर खोसला घूमदा फिरदा जिंदा बंदा है, वह मेरे पिछे पिया है ते हजारा रुपये बर्बाद करन दीआं गल्लां करदा है।
0: मैनू यकीन नहीं आउंदा।
1: डरपोक, स्वार्थी,
0: मूर्खे, बेवकूफ औरत, मैनू अगवा किते जान नाल तेरी शोहरत होर भी वध जावेगी। तेरे कहण मुताबक जेकर मैनू नाम कमाउण दा लोभ हुंदा तां मैं भी अगवा होण बिल्कुल ना डरदा, पर तेरियां गल्लां बिल्कुल बकवास लगदियां, बिल्कुल बकवास। उहदियां गल्लां नूं बकवास मंनदिया होया मैं भी यह नतीजा कढ़िया कि ओ झूठ कामनी ने सिर्फ इसे लिए कढ़िया कि लेखक अते उहदे संबंधां च पर्दा पिया रहे। मैं लेखक नूं लांबे करन वास्ते कई ढंग कई तरीके सोचन लग पिया। नाटक च कामनी ने कांता की भूमिका ली सी, अंत च उन्हें देश पांडे का कतल करना सी। शक दे ऐसे डरावने पल विच मेरे दिमाग च पिस्तौल विच असली गोलियां भर देन का ख्याल लाया, वो ख्याल इन्ना अनोखा लग्या कि मैं ठंडे दिमाग नाल उस ते अमल करन दे राह लभन लग पिया। नाटक लिए असी वरे पहला पिस्तौल खरीद लिया सी, उदे नाल रस्मी तौर ते गोलियां दा सैट भी खरीदिया सी। ड्रैस रिहर्सल मगरों मैं उस विच असली गोलियां भर दित्तियां। कामनी ने एनसीसी दी पिस्तौल सीखी सी, अते मैनू यकीन

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वक्-वक् चैनल अते आकाशवाणी दे वक्-वक् भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओह भी क्रिस्टल क्लीयर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वक्-वक् चैनल अते आकाशवाणी दे वक्-वक् भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओ भी क्रिस्टल क्लियर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

आप गवाए सेवा करे दा एहसास प्रभु नाल मिलाप करवाउंदा है। गुरु अर्जन देव जी तुखारी राग विचले छंत दे पहले भाग विच अपने मन अर्पण दी भावना नूं व्यक्त करदे ने कि हे सोहणे लाल जी, गुरु दी शरण सदका प्राप्त सोजी अनुसार मैं अपना मन तैनू दे दिता है। मैं तत्थों वारे वारे सदके जाना हाँ। हे प्रभु लाल, तेरी महिमा सुन के मेरा मन भिज गया है। तेरी महिमा दा नाम रस ऐसा अमृत रस है। हे मुरारी, इस नाम रस विच मन इस कदर भिज गया है कि मन अंतर विच ऐसा प्रेम बन गया है। हुण इस नाम रस तो बिना जीना मुहाल होया पिया है। जिवें मछली जल तो बिना बेहाल हुंदी है, मर ही जांदी है। हे मालक, तू अमुल है, किसे भी कीमत ते पाया नहीं जा सकता। तेरे वासे दा पारला बनना डिठिया नहीं जा सकता। हे सर्व गुणा दे दाते, मेरी गरीब दी बिनती सुनो। दास नू अपना दर्शन बख्शो। मैं तैथों बलिहारे हाँ।

कोल कुमाई लालना गुरमन दीना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। इस शब्द का गायन किया सी भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। प्रभु प्राप्ति की बात गुरबाणी विच इउं है जिवें लहरां समुंदर विच ही समा जाण, भाव अंतर मिट जावे। जल विच जल तरंग का समा जाना ही एकमिकता है, पर उसकी प्राप्ति सुखाली नहीं है। भगत कबीर जी गौड़ी राग दे ते पदे भाव रहाओ की पंक्ति तो इलावा तीन पद्या वाली रचना च फरमाते ने कि उस अत वड्डे ठाकुर प्रभु नू उसके सामे भावें उसके भार जितना सोना भी क्यों ना पेंट कर दईए तां भी रब नहीं मिलता। उतां मैं अपना मन उसनू अर्पण करके उसनू लभ लिया है। हुण तां मैनू पूर्ण भरोसा है कि मेरा रब ही अपना है। स्वै सिद्ध ही मेरे मन विच ए प्रीत गंड बज गई है, मेरा मन उस नाल रिज गया है। ब्रह्मा ने भी जिस रब का कथन करन दी कोशिश की थी, ओ भी उसका अंत पौन तो असमर्थ ही रहा। वो रब ता भजन बंदगी सदका सहज सुभाए ही मैनू मेरे हिरदे विच आण मिलिया है। हुण ता मैं अपनी चंचल बिरती अते मत छड़ दित्ती है। मैनू सोझी आ गई है कि सिर्फ प्रभु दी भजन बंदगी भगती ही मेरे नसीब विच है, मेरे निज भागां विच है। फरमान है, कंचन स्यो पाईए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। सरवण करदे आं भाई चन्नण सिंह मजबूर ते उन्हां दे रागी जथे द्वारा गायन कीता होया ए शब्द।

0: कंचन स्यो पाया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। इस शब्द का गायन किया सी भाई चन्नण सिंह मजबूर ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जयदीप सिंह।
1: यह पावन शब्द भगत कबीर जी वल्लों गौड़ी राग विच उचारण किया गया है अते रूहानीयत दे सोमे सांझी वालता दे रहबर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 327 ते सुभायमान है। इस शब्द की आरंभता विच भगत कबीर जी ने संसार दे लोकां नूं सुनेहा दिता है कि परमात्मा की प्राप्ति सोने दे वटे नहीं हो सकती। सोने दे पदार्थां भाव दुनियावी कीमती भेटावां अर्पण करके परमात्मा नहीं मिलता। कंचन स्यों पाईए नहीं तोल। असी गुरु अर्जन साहिब जी का एक बचन पढ़ते हाँ जिस विच दसते हैं कि रावण कंगाल नहीं सी, गरीब नहीं सी, जिसनू सोने की लंका वाला लंकेश कहा जाता है। उस रावण ने अपने इष्ट नू खुश करन लई अपना सिर अर्पण किया सी। 1363 पावन अंग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी उपर गुरवाक है, समन जाओ इस प्रेम की दम के हो होती साठ, रावण होते सो रंक नह जिन सिर दीने काट। भाव हे दानी मनुख धन दे वटे हरिनाम दा प्रेम नहीं मिल सकता। जेकर इस तरह हुंदा तां रावण अपना सिर वड के शिव जी नूं खुश ना करदा। भगत नामदेव जी का उचारण किया होया शब्द भी असी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 973 उपर पढ़ते हाँ जिस विच ओ कहिंदे हन घोड़े हाथी सेज वहटी जमीन जां सोना भी दान कर देईए तां वी राम नाम दे बराबर नहीं पहुँच सकता। अस दान गज दान सहजा नारी भूम दान ऐसो दान नित नित है कीजै आत्म जाओ निर्माइल कीजै आप बराबर कंचन दीजै राम नाम सर तौ ना पूजै। भगत कबीर जी ने फिर दसिया है कि परमात्मा नाल सांझ किवें बन सकती है। मन दे राम लिया है मोल, भाव मैं तां अपना मन दे के रब लब्भा है। असी गौड़ी सुखमनी विच वी गुरु अर्जन साहिब जी का बचन पढ़ते हाँ मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कारज रास। आपा सौंपना पैंदा है। गुरु नानक देव जी भी बाणी विच बचन करदे हन आप गवाईऐ तां शह पाईऐ और कैसी चतुराई। कबीर साहिब जी ने इस शब्द दे केंद्री

कि जिन्हां दा मन तन मायावी रंगत वाला है, ऐसे चोलड़े भाव शरीर प्रभु दी सेज दा आनंद नहीं माण सकते। हे प्रभु, मैं तेरे तो वारने हाँ। हे मेहरबान प्रभु, मैं तत्थों बलिहारी हाँ। मैं तो उन्हां तो भी कुरबान हाँ, सदा कुरबान हाँ जो तेरा नाम लेंदे ने। हे भाई, जे काया नू रंगत देनी ही है तो पक्की राम रंगत ही देवो। फिर प्रभु लिलारी ऐसा रंग चाड़दा है जो अज तक नहीं डिठा। ऐसिया प्रेम रंग विच रंगियां रूहां पास ही कंत प्रभु वसदा है। ऐसे प्यारियां दी तूड़ दी ही लोचा है। पर प्रभु आप ही ऐसे जीव साज के अपनी नदर द्वारा पक्की रंगत दिंदा है। ऐसी जीव स्त्री ही प्रभु कंत नू चंगी लगदी है। प्रभु आप ही उसनू चरना नाल जोड़ लेंदा है। हों कुर्बाने जाओ मेहरवाना, हों कुर्बाने जाओ, हों कुर्बाने जाओ तिना के लैन जो तेरा नाओ। इस शब्द का गायन किया है भाई प्यारा सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वख-वख चैनल अते आकाशवाणी दे वख-वख भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओह भी क्रिस्टल क्लीयर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

0: इस भजन के नाल भगती संगीत है प्रोग्राम इतने ही खत्म होता है। डीटीएच की पंजाबी प्रसारण सेवा का जलंधर केंद्र है। तुम सुन रहे हो आकाशवाणी पंजाब। इस वे तड़के दे चार बज चुके ने। आओ हुण तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलते हैं जिथों तुसी शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे।
1: चोरा जरा ते कुड़िया खरा बवेकार एक होंदा खच ले था पिकाई कार जर थर जिया पुरिया लोआ आकार आया कार ओए जे आखे सो तू है जाने ते ना पे तेरी सार नानक भगता भुख सलाहन सच नाम आधार सदा अना

बड़ी सेव के संतोखी जिन सचो सच जाया उन्हें मंदिर पैन रखो उन कर सुकृतम कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

0: खंडावर पंडा अंत जेर जुट पुजा खानी सेत जा सोमित जाने नानक सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले समना जिन करता करना किया चिंता पे करनीता सो चिंता सो करता चिंता करे जिनू पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तसी बाण भग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
1: लख ने किया चंगियां लख ना परवा लख तप प्रतीर्था सहजो बेबान लख सृतन संग्राम।

पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात पढ़ी है जेते बरस बरस पढ़ी है जेते मास पढ़ी है जेती अर्जा पढ़ी है जेते सास नानक लिखे एक गल होर।

क्यों जागे गुरबिन सुत पग पेताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिना वे किस थाए ना पाई रे बाणी मड़ी मसानी अंधे ना जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे

लाग, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बेसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार।

सब जग चलनहार, कूड मिठा कूड माख्यों कूड डोबे पूर, नानक वखाणे बेनती तुग बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।

कर्म जनक दुध पाया तिन्हें कसम ते आया इन्ना जनता के वास किछ नहीं तुद वेखी जग तू पाया एक नानू तू मेल नहीं का पो तुद खुआया और कृपा ते जाने जिथे तू आप बुझाया सहजे सच समाया सहजे।

0: दुख दारू सुख रूप आजा सुखता न होई, तू करता करना में नाही जाहो करी ना होई, बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई रखे रहा, जात में जो जोत में जाता कुकला भरपूर रहा, तू सच्चा साहिब सुख सवाल योजन की सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, जो कुछ करना सो कर रहा महला दूजा।
1: जोग शब्दन ज्ञान शब्दन बे शब्दन ब्राह्मण खत्री शब्दन सूर शब्दन सूदर शब्दन प्रकृत है,

सोरठे गुरु अर्जुन पुरख प्रमाण पार्थो चले नहीं ने जा नाम निशान सतगुरु शब्द सवार।

0: फिर संकट जो गर्भ न आयो।
1: कल समुंदर पैरूप प्रगट हर नाम उदारण, बसे संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण। निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई, मन बच जिन जान्यो पयो ते संसर सोई। तरन गगन नव खंड में ज्योत स्वरूपी रहो पर, पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन पर तक हर। पन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्चन पर तख हर।
2: श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सतजुग जन त्रूपर। श्री प्रहलाद भगत उदरियंग हस्त कमल माथे पर तरियंग, अलख रूप दी लख्या ना जाई, साधिक सिद्ध सगल शरणाई। गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म दे निस्तार हो। गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोई। गुर प्रसाद प्रभ पाइए, गुर बिन मुक्त ना होए। गुर नानक निकट बसे बनवारी, तिन लेना थाप जोत जगतारी। लेने पंथ धर्म का किया, अमरदास पल्ले को दिया। तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो, हर का नाम अखैन दप्यो। अप्यो हर नाम अखैन दचो, जुग गुर सेवा कर फल लियं। बंदे है जो चरण शरण सुख।

0: परमानंद गुरमुख कयंग परतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण।
1: जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सत गुर थिर की आहो अमरदास अमरत शतर गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन परसो कहे मथुरा अमृत बैण मूरत पंच पर महान पुरख गुर अर्जुन पिखो नैण।
2: सच सभा दीवान सचे सचे पै तरयो सचे तखत निवास सच

गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव शिव सिद्ध साधिक सुरे सुर गन तरे ते तिस गुर बचन सुन कन रे फुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर करै तरयो प्रहलाद गुर मिरत मुन जन रे तरै नारदाद सनकाद हर गुरमुख तरै एक नाम रग

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर थाया तो बड सुपर सदा सब विदरत नागर संत मराल करे कंतूहल

भूलो सतदारा से प्रीतन एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत तेरे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरना।

साहो चटिया तुद डिठो सच्चे पात साह मान जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहादा साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाह सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहादा जिस पास बैठिया सोहिया

नर्सरी महल्ला चौथा कार पहला चौपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मेरा हीरा रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरयो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे

जन हर गोविंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जैस डठे सब दुख जाए तेक बहादुर सिमरिया कर नौ निदयावे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे पंजा प्यारिया सोह साहिबजादिया चारिया मुकतिया हठिया जापिया तापिया जिन्ना नाम जपिया वंड छगया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया की कमाई का ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया की सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिना की कमाई का ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे पंजा तखता सरबत गुरद्वार का ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवन का सदका सर्ब सुख होवा जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचे आ रहा है तो देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाहा दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इसनान चौंकिया झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीमा मत उच्चे मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ न वसोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते से बा संभाल दा दान